0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: अज्ञान, माना हुआ अज्ञान, फैला लो जितना फैलाना उतने दुख फैल जाएगा तुम्हारा। जितना संबंध फैलाते चले जाओ उतने ही तो अज्ञान फैलता चला जाता है। अभी विदेश में आपका कोई और वहां पधारे अमेरिका में, तो अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे, दुखी हो जाओगे, क्या संबंध। संबंध जितना फैलाते चले जाओगे तो विनाशी संबंध फैलाया तो विनाश होगा, उसका दुख का अनुभव होगा। माना हुआ अज्ञान, कर्म भी अज्ञान से ही तो हो रहा है, सारा का सारा खेल अज्ञान। भगवान का भजन करो, अज्ञान नष्ट हो जाए तो तुम्हारे मरने का दुख चला जाएगा, दूसरे के मरने का दुख चला जाएगा। अगर भजन करके अज्ञान को नष्ट नहीं किया तो दुख ही दुख है, छोटी छोटी वस्तु के नष्ट होने में दुख है। एक गांव में पूरा परिवार बैठ के रो रहा था, बोले इनके एक भैंस थी, उसी दूध से काम चलता था, भैंस मर गई, पूरा परिवार वो ऐसे मानो उनके सर्वस्व नष्ट हो गया हो। अब गरीब आदमी उसी भैंस के दूध से काम चल रहा, क्या है? माना हुआ संबंध, अपने सुख की वासना से संबंध, अपने सुख की वासना का नाश, तो मनु मेरा नाश। अब वो हाय हाय कर रहा, अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का अंश अपने स्वरूप को न जानने के कारण छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी व्यक्ति, छोटे छोटे पदार्थ, किसी क्रीड़ा में पराजित हो गया, शरीर को नष्ट कर दिया। एक किसान की फसल नष्ट हो गई, शरीर नष्ट कर दिया। कहीं फेल हो गया, वो शरीर नष्ट कर, मतलब कहां मान्यताएं हैं, मान्यताएं कहां है? अपने जीवन को कितना अमूल्य जीवन आप बना लेते हैं या कितना घटिया बना देते हैं, अज्ञान ही तो है। अज्ञान के कारण एक सेल्फी में अपने प्राण दे रहे हैं लोग। हमारा अज्ञान हमारा नाश कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है, हमें चिंता में ले जा रहा है, उसी को दूर करना है। मस्ती अपने अंदर अपार है, और हम मस्ती अपने अंदर की नहीं, हम बाहर से मस्ती चाहते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। अगर अपने अंदर की मस्ती जान जाओ ना प्यारे, तो कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। दुख आप मोल ले रहे हैं, ना आपका ये शरीर आपका था, ना है और ना रहेगा। किसका प्रश्न था? आप देखिए, आपका शरीर पहले था क्या? पहले आप कितनी आयु है आपके शरीर की?
1: 52।
0: 52 वर्ष पहले शरीर नहीं था, और पता नहीं 52 मिनट, 52 सेकंड या 52 दिन या 52 महीने, कुछ पता नहीं कितने दिन टिके गए, और ये है नहीं, रोज का रोज नष्ट हो रहा है। अब यही हमारा नहीं है तो फिर और कौन हमारा हो गया, जब यही हमारा नहीं। आपको विश्वास है कि आपका नहीं है? है ये आपका शरीर, आपका नहीं आपको पता है, लेकिन प्यार तो बहुत है इस शरीर से। एक अपनापन इतना जोर का है कि शीशा देखने पर लगता है मैं, नहीं लगता है भाई, यही दुख देता है, यही जन्म मृत्यु का कारण है, और इसी से संबंधित पुत्र पति रिश्ते नाते कितने संबंध हैं, और ये सब मरण धर्मा है, ये भी पता है आपको? दिमाग में रख लो कि हम आए कहां है। जैसे जानकारी करना है कि भाई आपका आया, इसका नाम है मृत्यु लोक, सब मरेंगे। और जिनसे आप अपनापन करना चाहिए उनसे शायद हुआ है कि नहीं, अगर उनसे हुआ होता तो जिनसे अपनापन किया है इनके बिछुड़ने पर आपको दुख नहीं होता। भगवान ने आदेश किया, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अभी खत्म हो जाए रोना, दुख खत्म हो जाए, कुछ नहीं, किसके प्रति रोना? ऐसा खिलौने हैं हमारे, आपके जितने ढांचे हैं ये माया के खिलौने, बिगड़ेंगे। एक तरफ कुम्हार के बर्तन जैसे फूटते रहते हैं तो एक तरफ उसकी चाक चलती रहती है, और दूसरी तरफ आवे में तपते रहते हैं, तो सृष्टि पालन और संघार, तीनों क्रियाएं मेरे भगवान की बराबर हो रही। कहीं जो है मंगल बधाइयां बज रही हैं, तो कहीं आंसुओं की झड़ी लगी है, वियोग मर गया है कोई, कहीं हाहाकार मचा हुआ है, तो कहीं नृत्य हो रहा है, तो कहीं कोई खान पान की मौज मस्ती, देखो ना पूरे संसार का, और है कुछ नहीं। एक विशद फिल्म है, एक विशद बड़ी फिल्म है जीवन की, वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, 80 वर्ष में, लेकिन टोटल झूठी फिल्म, झूठी होती ना। अच्छा, इस फिल्म में आप ही डायरेक्टर है, आप ही हीरो है, आप ही हीरोइन है, आप ही विलियन है, आप ही पर्दा है, आप ही पूरी शूटिंग है, आप ही एक ही है और अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित करके खेल रहा है और अपने आप को समेट लेता है। एक ही एको हम बहुश्यामा बहुश्यामा एको हम, बड़ा विचित्र खेल है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो दुखी सुखी होते हैं, पर हमको अंदर से ज्ञान होता है झूठी है, इसलिए हम बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। पर इस फिल्म का ऐसा मतलब आकर्षण है कि ये झूठी नहीं लगती, ये सच्ची लगती है। शास्त्र कह रहा और प्रायः सब लोग जानते हैं, जब गांव में शव यात्रा करते ना लेकर के, तो बोलते हैं जोर से राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते ना। तो सत्य क्या सब लोग जानते हैं, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, फूंकने तक के लिए जाओगे फिर यही संसार सत्य है। इसलिए हमें दुख लगता है क्योंकि हम जिस जिससे संबंध रखते हैं। देखो अभी जैसे सूचना मिले ना कि अभी मथुरा में एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, तो आप उस आदमी के ऊपर नाराज हो गए, कितना बढ़िया बात चल रही थी बीच में आके 10 लोग मर गए। नहीं, उसमें एक आपके फूफा भी थे, अब आप क्योंकि आपका रिलेशन निकल आया, संबंध निकल आया, पहले दुख नहीं था संबंधी, अब वो सत्संग में मन नहीं लगेगा, अभी लगेगा मुझे जाना चाहिए मेरा कोई। अगर अपना संबंध ना हो और 50 लोग मर जाते हैं, सूचना मिलती तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहोगे यार इतने सत्संग में काहे को विक्षेप डाल लो। अगर उसमें कोई एक दूर का भी है तो आपका चित्त खिंच जाएगा, मतलब संबंध ही आपके दुख का कारण है। तो वो संबंध हम अविनाशी हैं, हमारा संबंध सीधे भगवान से है। मम युवांशो जीव लोके जीव भूतासना, अब उसको भूल करके अपने को स्त्री पुरुष मानकर जगत में फंस गए, भाई यही अध्यात्म से सुधारना, अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त, और नहीं तो भैया फिर ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये खेल तो चल ही रहा है और हर सेकेंड हमारी आयु से जा रहा है। जब लोग बर्थडे मनाते हैं तो हमें लगता है इनको रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। एक साल चला गया जिंदगी से, एक साल जिंदगी मतलब 12 महीना चले गए, 12 महीना, एक श्वास कितनी कीमती है वो तब समझो जब आखिरी श्वास हो और आप कह दो कि 60 वर्ष की कमाई पूरे जीवन की हम आपको देते हैं, 2 श्वासें बढ़ा दो, नहीं बढ़ेंगे। इतनी कीमती श्वासों में तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया, तुमने परोपकार नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया, अब क्या रोज का रोज श्वासें जा रहे हैं। और खुशी मनाने वाली बात हमारी समझ में ले आती कि किसी की जेब कटे और वो नाचे, ऐसा हो सकता है? मतलब 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में थे और किसी ने तुम्हारे 10,000 रुपये काट लिए तो आप 90,000 में नाचेंगे? तो यही तो बात है, तुम्हारे जीवन के 12 महीने काट लिए गए, गए तुम नाच रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि यार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, 12 महीना तो चले गए, अगला 12 दिन है कि नहीं है। तो लोग बड़े मतवाले हैं, हम कह रहे हैं मनाओ भगवान नाम कीर्तन करके मनाओ, सत्य वस्तु को जोड़ करके मनाओ, असत्य वस्तु में क्या। अब बोले आज पार्टी है, जन्मदिन की मदिरा मांस और इस तरह का व्यवहार, तो 1 साल चला गया जीवन का और समय बर्बाद कर रहे हो, मृत्यु नजदीक आ रही, मनुष्य जीवन हटा तो सुअर कुत्ता गधा पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। नहीं, ये लोग ऐसे कलयुगी हैं कि जिंदा भूंज के खान जाएंगे। अरे यार लोग जिंदा जला के खाते हैं, सरिया ऐसे टांग दियो, पैर बांध दियो, नीचे आग लगा के भूंज के ऐसे। तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुखमय जीवन है, इसमें भजन कर लो, कम से कम इतना भजन कर लो कि अगला हमारा जन्म मनुष्य ही को हो यार, हम सुअर कुत्ता तो न बने, मुर्गा मुर्गी तो न बने। तो बहुत अगर इस जन्म में तुम ये सब खा पी रहे हो और गंदे आचरण कर रहे हो तो फिर तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वही कटना पड़ेगा, वही सब भोगना पड़ेगा। तो ये जो दुख हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है भाई, हमारी प्रार्थना है नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको ज्ञान दे जिससे आपका ये माना हुआ दुख नष्ट हो जाए। जैसे स्वप्न में है ना, हमें कोई लाठी से पीट रहा हो, अब क्या उपाय है? फोन करके हम पड़ोसी सब इकट्ठा कर ले, पुलिस इकट्ठा कर ले, तो जो स्वप्न में पीट रहा है हम बाहरी उपाय से उसे बचा सकते हैं क्या? अब कोई बताओ, कुछ भी कर लो बाहर से, कुछ नहीं, एकमात्र उपाय बचाने के उसे जगा दो, बस जे भी जगाया सब खत्म हो गया। तो इस संसार का जो दुख है कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते आप, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा सब सुवनिहारा और देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये जग जामिन जागे जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या, समझ गया तो रोला क्या। अभी हम लोग स्वाप्निक जगत में फंसे हुए, इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो तो इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी। नहीं बड़ा कर्म जाल फंसा हुआ है।
1: डेढ़ साल से सत्संग सुन रही आपका, मैं डेढ़ साल हो गए डिप्रेशन में जाते जाते मैं बच गई।
0: हाँ सत्संग बचा तो लेगा ही, सत्संग तो बचा लेगा, अगर धैर्य से सुनो तो आवागमन से बचा लेगा। बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग मात्र आपको आवागमन से बचा लेगा अगर ध्यान से सुनो और उसे पकड़ लो तो।
1: भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं होती, भोग नहीं लगा रही हूँ ढाई साल।
0: भगवान को भोग की जरूरत नहीं, वो पूरे विश्व को भोग पवा रहे। भगवान को जरूरत है आपके अपनेपन की और उसके लिए हमें चाहिए स्मरण, सतत स्मरण। तो नाम जप करो, जितना आपसे बन सके नाम जप करो। नाम जप जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब दवाई एक है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके इस संसार चक्र से पार होने के लिए अमोघ औषधि। जासु नाम भव भेषज, खूब नाम जप करो, खूब देख लेना आप आनंदित हो जाएंगे।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह पनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विवल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
0: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ठक ठक
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
9: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
12: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
13: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
14: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
15: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर, हर

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं लोग को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, कई जगहों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 2006 लीटर से अधिक शराब के साथ दो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला विधिज्ञ संघ के चुनाव में शीर्ष पदों पर पुनः पुराने चेहरों को मिला मौका। ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का होगा आयोजन। 65 डीजे और एक दर्जन लाउडस्पीकर को पुलिस ने अलग अलग जगहों से किया जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मुहर्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस अलर्ट मोड पर काम कर रही है। गुरुवार की देर शाम जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। वहीं संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे जिले के कोने कोने में पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा। साथ ही असामाजिक तत्वों के लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए सोशल मीडिया की टीम को भी एक्टिव किया गया है। पुलिस मोबाइल फोन पर लगातार नजर बनाए रखी है। इस दौरान पुलिस ने कहा है कि बिहार में हाई अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी भी सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के कहीं भी कोई जुलूस नहीं निकलेगा। प्रशासन सख्ती से काम करेगा। डीजे और भड़काऊ गाने तथा सांप्रदायिक नारेबाजी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवादित झांकियों, आपत्तिजनक चित्रों और हथियार के प्रदर्शन पर रोक रहेगा। मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए तमाम जिले के नागरिकों से पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी और जिला पदाधिकारी ने निवेदन किया है। साथ ही सभी मुस्लिम भाइयों को मुहर्रम की बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा के नेतृत्व में एक शराब के बहुत बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थावे थाना क्षेत्र के धतीवना चमर में मुर्गी फार्म के पास घेराबंदी करते हुए 2006 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा है। इस मामले में थावे थाना क्षेत्र के लछवार गाँव के अविनाश सिंह को गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र सहनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब की यह बहुत बड़ी खेप अलग अलग इलाकों में खपाने के लिए लाई गई थी और रात में लाकर इसको स्टॉक किया गया था। तभी पुलिस को भनक लग गई और भारी संख्या में पुलिस बल ने इस इलाके को घेर लिया और शराब के इस बहुत बड़े कंसाइनमेंट को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से इस शराब के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ भी की जा रही है। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी अवैध शराब के विरुद्ध बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वाहन से पुलिस ने 1037 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया है और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पिकअप वाहन को जब्त करने के बाद आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई बथुआ बाजार से माड़ीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर की। बताया जा रहा है कि इस अवैध शराब को लेकर तस्कर आ रहे थे, तभी पुलिस ने बल के सहयोग से छापेमारी कर शराब तस्करों को पकड़ा और शराब को जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम नीरज कुमार पांडे है, जो भाभोपाली थाना बड़हरिया जिला सिवान का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर भी पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला विधिज्ञ संघ का चुनाव संपन्न हो गया। आज मतगणना का कार्य देर रात तक चल रहा था। इसमें सर्वप्रथम शीर्ष पदों का मतगणना संपन्न हुआ, जिसमें पुराने चेहरों को ही लोगों ने मौका दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में जो अब तक रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें अध्यक्ष तथा महासचिव दोनों पदों पर पुराने चेहरों को अधिवक्ताओं ने पुनः अपना विश्वास जताते हुए इन्हें मौका दिया। धीरेन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए, तो वहीं मनोज कुमार मिश्रा फिर से महासचिव निर्वाचित हुए हैं। इधर कोषाध्यक्ष के पद पर विनय मिश्रा को बहुमत मिला है। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को अधिवक्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। पुष्प माला पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने भी अपने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया और पुनः विश्वास मत देने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिया गया। इस दौरान पूरे दिन आज न्यायालय परिसर में विधिक कार्यों का काम प्रभावित हुआ, लेकिन पूरे दिन उथल पुथल रही। एक दूसरे को लोग मिठाइयां खिलाने लगे। जीत के बाद समर्थकों ने उत्साह व्यक्त किया और रंग अबीर गुलाल लगाकर भी अपना खुशी जाहिर किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जिले के विभिन्न पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में आवश्यक रूपरेखा भी जारी की गई है। कार्यक्रम के अनुसार प्रथम शिविर 5 जुलाई से पूर्वाह्न 10:30 बजे से बंगाल खाड़ पंचायत भवन पर आयोजित होगा। इसी तरीके से दूसरा शिविर 11 जुलाई को पंचायत भवन बड़हरा में आयोजित होगा। 26 जुलाई को पंचायत भवन बनकटा में आयोजित होगा। प्रत्येक सप्ताह कहीं न कहीं शिविर का आयोजन होगा और लोगों को विधिक जागरूकता से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने मुहर्रम के दौरान प्रतिबंधित डीजे सेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों से 65 डीजे और 12 लाउड स्पीकर सेट को जब्त किया गया है। 3 डीजे की दुकानों को पुलिस ने सील भी कर दिया है। मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चल रहे इस अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सिधवलिया थाना की पुलिस ने 16 डीजे सेट को जब्त किया और 3 दुकानों को सील कर दिया। बैकुंठपुर पुलिस ने भी 6 डीजे सेट को जब्त किया। नगर थाना क्षेत्र से 11 डीजे सेट को जब्त किया गया। सीरीपुर थाना की पुलिस ने 8 डीजे सेट को जब्त किया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने 18 डीजे सेट को जब्त किया और 12 लाउड स्पीकर को भी जब्त किया गया। कटिया थाना की पुलिस ने 6 डीजे सेट को जब्त किया। इस प्रकार से कुल 65 डीजे सेट 12 लाउड स्पीकर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और 3 दुकानों को सील किया गया है। इन सभी लोगों को पुलिस ने निर्देश दिया था कि मुहर्रम के दौरान डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बावजूद भी ये लोग डीजे का संचालन करने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने यह कार्रवाई की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना तथा कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में खेत

0: गुणवत्ता में सुधार होता है तथा फसल उत्पादन को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखा जा सकता है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बसडीला ओवर ब्रिज के पास छापेमारी करते हुए अमित तिवारी को 31 कार्टून शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इसकी एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। पकड़ा गया आरोपी बेतिया पश्चिमी चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के कार्यालय में जनता की शिकायतों को सुना गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय मिश्रा ने भी लोगों की समस्याओं को सुना। बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच रहे हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उनके मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने चीटिंग केस के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर पहले से मामला दर्ज था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और अभियुक्त वीरेंद्र पाठक को गिरफ्तार कर लिया। यह विजयपुर के बंधौरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज इन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सदर अस्पताल में जिला प्रशासन ने अब बड़ा आदेश जारी किया है। बिना ड्रेस कोड और आई कार्ड के हॉस्पिटल कैंपस में कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर पर भी यह नियम लागू होगा। केवल सरकारी कार्य या मरीज सहयोग के लिए ही एंट्री मिलेगी। अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ और बैठकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। सभी वार्ड प्रभारियों और सुरक्षा कर्मियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने NDPS एक्ट के एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम इंद्रपाल राय है। यह बैकुंठपुर के उसरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों रमेश शाह पिता स्वर्गीय नगीना शाह और अवधेश कुमार पिता स्वर्गीय इंद्रजीत प्रसाद, ये दोनों बघेजी के रहने वाले हैं, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, कई जगहों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 2006 लीटर से अधिक शराब के साथ दो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला विधिज्ञ संघ के चुनाव में शीर्ष पदों पर पुनः पुराने चेहरों को मिला मौका। ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का होगा आयोजन। 65 DJ और एक दर्जन लाउडस्पीकर को पुलिस ने अलग अलग जगहों से किया जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली जुलने की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या

0: 75।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: एक रंग इश्क का।
4: पिछले पन्ने में आपने जाना कि कैसे मीनल ने पेंटिंग कंपटीशन में अपना नाम रोशन किया, जिसमें उसके हार जाने या शायद यूं कहें कि मजाक बनने की पूरी गुंजाइश थी, पर उसकी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय ने उसे इनाम का हकदार बना दिया। और बात यही नहीं रुकी, उससे नफरत करने वाली शिवानी ने भी उसे दावत पे बुलाया और साथ ही डेविड को भी। क्या ये रंग जिंदगी के कैनवस पर कोई खूबसूरत तस्वीर बनाएगा या फिर मजाक उड़ाएगा, ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का। हाय, मैं हूँ कृति और आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। गाना पर मीनल अपने कमरे में बैठी हुई कुछ ना कुछ ख्यालों की नैया में डोले जा रही थी। उसके ख्याल पेंटिंग कंपटीशन की खूबसूरत यादों से होते हुए शिवानी की बातों तक जा रहे थे। अब तो शिवानी दोस्त हो चुकी थी, उसने पार्टी में भी बुलाया है, शहरी दावत है। कैसे जाना होगा, क्या पहनना होगा, किस तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के सवालों ने मीनल को घेरे रखा था। मीनल के लिए ये सब इतना आसान नहीं था कि पार्टी की आबोहवा को आसानी से समझ सके। हालांकि वो हर रोज खुद को तैयार करती थी, पर फिर भी उसके जहन में कुछ कश्मकश सी थी कि आखिर किस तरह वो सबसे पेश आएगी। वहां तो हाई सोसाइटी के लोग भी होंगे, कहीं किसी ने बेइज्जती कर दी तो। फिर कई बार ये भी ख्याल उसके जहन में दस्तक देता था कि अगर इनकार कर दूं तो, कोई बहाना बना दूं तो क्या होगा। तबीयत खराब होने का भी तो बहाना बनाया जा सकता है ना। पर फिर वो सोचती कि अभी अभी शिवानी से दोस्ती हुई है, उसने इतने प्यार से एक दावत में बुलाया है, सब दोस्तों को बुला रही है, उसका दिल तोड़ना भी तो ठीक नहीं ना। हाय राम, किस मुसीबत में फंसी हूं। मीनल अपने ही ख्यालों में बैठी हुई थी कि वहां अम्मिया आई, जो इस बात से बेहद खुश थी कि उसे एक शहरी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है। उसने सुबह से लगभग 20-22 ऑप्शन दे दिए होंगे मीनल को कि उसे क्या पहन के जाना चाहिए। अम्मिया ने खुद पे भी कई तरह के प्रयोग किए थे, जिनमें से आधे तो मीनल ने रिजेक्ट कर दिए और कुछ तो बेहद ही अजीब से थे। मीनल अपने सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अम्मिया को नजरअंदाज करना उतना ही मुश्किल था। शाम जिस तरह धीरे धीरे अपनी जवानी की तरफ बढ़ रही थी, मीनल की धड़कनें भी वैसे ही बढ़ती जा रही। आज उसे तैयार होके खूबसूरत दिखना था। मीनल का हमेशा से मानना था कि असल खूबसूरती सादगी में है, लेकिन आज वो कुछ खास दिखना चाहती थी, तो वो थोड़ा खुद को साथ सवार रही थी। और तैयार होने के बाद मीनल सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ अम्मिया ने आज जीन्स और कुर्ती पहनी थी, जो कि उसके पहनावे से अलग था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे से हंस के बोली, तू भी अच्छी लग रही है। फिर दोनों हॉस्टल के बाहर आए, वहां पे एक टैक्सी ली और उसे शिवानी के घर का पता बताया जहां उन्हें जाना था।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86-164।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: एक रंग इश्का।
4: पिछले पन्ने में आपने जाना कि कैसे मीनल ने पेंटिंग कंपटीशन में अपना नाम रोशन किया, जिसमें उसके हार जाने या शायद यूं कहें कि मजाक बनने की पूरी गुंजाइश थी, पर उसकी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय ने उसे इनाम का हकदार बना दिया। और बात यही नहीं रुकी, उससे नफरत करने वाली शिवानी ने भी उसे दावत पे बुलाया और साथ ही डेविड को भी। क्या ये रंग जिंदगी के कैनवस पर कोई खूबसूरत तस्वीर बनाएगा या फिर मजाक उड़ाएगा, ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का। हाय, मैं हूँ कृति और आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। गाना पर मीनल अपने कमरे में बैठी हुई कुछ ना कुछ ख्यालों की नैया में डोले जा रही थी। उसके ख्याल पेंटिंग कंपटीशन की खूबसूरत यादों से होते हुए शिवानी की बातों तक जा रहे थे। अब तो शिवानी दोस्त हो चुकी थी, उसने पार्टी में भी बुलाया है, शहरी दावत है। कैसे जाना होगा, क्या पहनना होगा, किस तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के सवालों ने मीनल को घेरे रखा था। मीनल के लिए ये सब इतना आसान नहीं था कि पार्टी की आबोहवा को आसानी से समझ सके। हालांकि वो हर रोज खुद को तैयार करती थी, पर फिर भी उसके जहन में कुछ कश्मकश सी थी कि आखिर किस तरह वो सबसे पेश आएगी। वहां तो हाई सोसाइटी के लोग भी होंगे, कहीं किसी ने बेइज्जती कर दी तो। फिर कई बार ये भी ख्याल उसके जहन में दस्तक देता था कि अगर इनकार कर दूं तो कोई बहाना बना दूं तो क्या होगा। तबीयत खराब होने का भी तो बहाना बनाया जा सकता है ना। पर फिर वो सोचती कि अभी अभी शिवानी से दोस्ती हुई है, उसने इतने प्यार से एक दावत में बुलाया है, सब दोस्तों को बुला रही है, उसका दिल तोड़ना भी तो ठीक नहीं ना। हाय राम, किस मुसीबत में फंसी हूं। मीनल अपने ही ख्यालों में बैठी हुई थी कि वहां अम्मिया आई, जो इस बात से बेहद खुश थी कि उसे एक शहरी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है। उसने सुबह से लगभग 20 से 22 ऑप्शन दे दिए होंगे मीनल को कि उसे क्या पहन के जाना चाहिए। अम्मिया ने खुद पे भी कई तरह के प्रयोग किए थे, जिनमें से आधे तो मीनल ने रिजेक्ट कर दिए और कुछ तो बेहद ही अजीब से थे। मीनल अपने सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अम्मिया को नजरअंदाज करना उतना ही मुश्किल था। शाम जिस तरह धीरे धीरे अपनी जवानी की तरफ बढ़ रही थी, मीनल की धड़कनें भी वैसे ही बढ़ती जा रही। आज उसे तैयार होके खूबसूरत दिखना था। मीनल का हमेशा से मानना था कि असल खूबसूरती सादगी में है, लेकिन आज वो कुछ खास दिखना चाहती थी, तो वो थोड़ा खुद को साथ सवार रही थी। और तैयार होने के बाद मीनल सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ अम्मिया ने आज जीन्स और कुर्ती पहनी थी, जो कि उसके पहनावे से अलग था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे से हंस के बोली, तू भी अच्छी लग रही है। फिर दोनों हॉस्टल के बाहर आए, वहां पे एक टैक्सी ली और उसे शिवानी के घर का पता बताया जहां उन्हें जाना था।
11: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
12: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
11: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
12: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
13: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
12: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
13: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
12: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
13: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
14: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
15: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
14: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
15: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
14: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
15: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
16: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
17: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
18: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
17: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604-48652 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: खाली डब्बा, खाली बोतल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए

0: पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स

0: एक खबर है वेनेजुएला में डबल भूकंप। पत्र लिखता है, लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉइड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है। भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है, वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत। लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: गाना बजा दूं।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 894 18744।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला कि ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट।
8: समाचार सुनिए, पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे अशुरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। यह प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
9: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
8: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
10: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
8: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की यह परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। NTA के अनुसार उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। NTA ने पुनर्परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी हेतु अपने बैंक खाते के विवरण की पुष्टि और उसे अद्यतन करने के लिए भी एक पोर्टल खोला है। बैंक विवरण इसी महीने की 30 तारीख तक अद्यतन किए जा सकते हैं। नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय जिले के परीक्षा केंद्रों पर हुए फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 12 सदस्यीय SIT का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टीम का नेतृत्व EOU के DIG करेंगे। गौरतलब है कि नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में अलग अलग मामलों में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मद्य निषेध सिपाही बहाली परीक्षा में बेगूसराय और नवादा में फर्जीवाड़े मामले की जांच भी EOU करेगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टर सिंह के अनुसार विभाग ने कार्रवाई से पहले उनसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उन्होंने कहा है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सके थे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सिंह को बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर PMCH के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदन की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के भीतर या बाहर स्थल अध्ययन पर जाने वाली सभी समितियों के साथ प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा के दौरान प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करनी होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, जमुई, औरंगाबाद और अरवल जिले के कई प्रखंडों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही इन स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने बांका, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया और मुजफ्फरपुर समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना, गयाजी, जीरादेई, बक्सर, शेखपुरा और वाल्मीकि नगर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दवाओं पर QR कोड या बार कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं, टीके, मादक और मनोरोगी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। यह प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना, अहमदाबाद और दानापुर, बलसाड़ समेत 5 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल अब 30 जुलाई तक, बलसाड़ दानापुर स्पेशल 27 जुलाई तक और अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई तक चलेगी। इधर रेलवे ने पटना कोटा एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन शाम 5:41 पर जौनपुर सिटी स्टेशन पर पहुंचेगी। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों के शहादत की याद में यौमे अशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर हम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के करबला में दिए गए बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि उनकी शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। अरवल समेत विभिन्न जिलों में वरीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में ताजिया जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारा तला क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से मुंगेर जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक युवक अब भी लापता बताया जा रहा है। मृतकों के शवों को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुंगेर भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। मामले में गोदाम मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत और आयरलैंड के बीच आज से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला बेलफास्ट में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस मैच से अपना डेब्यू कर सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में वैभव टीम इंडिया के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। उनकी उम्र अभी 15 साल 90 दिन है। भारत रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू। बिलौटी पहुंची आयोग की टीम ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, हज 2027 16 साल बाद पटना एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन होगा, पहली बार सीधे जा सकेंगे जेद्दाह और मदीना। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 188 की मौत। प्रभात खबर लिखता है, स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान गायब रहे PMCH के प्राचार्य को हटाया। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, NCERT सिलेबस में इमरजेंसी सेक्शन जोड़ा गया, 9वीं कक्षा को पढ़ाया जाएगा। आज अखबार की प्रमुख खबर है, शिक्षकों के तबादले के लिए नई नियमावली लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे आशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजीम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: ओम नमः शिवाय।
10: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
9: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
10: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
10: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
10: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
9: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
10: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
9: दीपक राज टूर

0: तो नमस्ते नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार, भारती जी बोल रहे हैं।
1: नमस्कार। हाँ,
2: कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
2: हम भी ठीक हैं, जकात जिंदा, एकदम ठीक, एकदम अच्छे से। देखा बारिश बढ़िया है।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
2: अभी तो नींद आ गया था, सुबह तो पंखे के नीचे, और फिर 11 बजे तो टूटा है थोड़ा बहुत, फिर पंचायत अभियान से जुड़े हैं ना।
1: जी जी।
2: तो वही थे तो फिर आए तो थोड़ा लेट से खाना खाए थे 9 बजे, और अभी काम खा लिए और खाने के बाद थोड़ा नींद आने लगा।
1: कोई नहीं, खाने के बाद थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए,
2: शरीर को तो ध्यान चाहिए, नॉर्मल है कि नहीं?
1: जी।
2: अभी तो बनता है।
1: कौन सा गाना सुनेंगे आज?
2: आज गाना था पैर में बूट हो गया, कपड़े हो गए, नौकरी हो गए, छुकड़ी हो गई, क्या बात हो गया, गाना सीख करेगा की सलाम करेगा, ऐसा गाना।
1: ओके
2: जी। और सब सुनाइए।
1: और सब तो बस चल रहा है, ठीक है। तो गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मैं सुधीर खोल बोल रहा हूँ, करियो झारखंड से।
1: कैसे हैं आप?
0: आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
1: मैं भी ठीक हूँ
0: जी।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: सुना दीजिए मैम, कोई भी सुना दीजिए। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा भोजपुरी में।
1: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रंजीम की पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रंजीम के प्यारा प्यारे श्रोता गाने सब सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजीम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
14: नमस्ते मैडम जी।
13: नमस्ते,
14: नेहा बोल रहे हैं भोरत से।
13: कैसी हैं आप?
14: अच्छा है, बताइए कैसे हैं?
13: हम भी बढ़िया हैं।
14: अच्छा ठीक है, बढ़िया है, तभी तो अच्छा रहेगा। तब नाश्ता हो गया?
13: मेरा हो गया है, आपका हो गया क्या?
14: आपका इंतजार कर रहा हूँ।
13: अच्छा चलिए, कोई नहीं, इंतजार खत्म हुआ, कॉल लग गया। और बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
14: गाना सुना दीजिए, भाई भाई नक्सल भी लगता है।
13: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
14: आपको जितने जिम दोस्त है सुनते हैं सबके साथ।
13: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
14: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है बहन जी, आपके लिए फरमाइश सुन रहे हैं।
0: तो बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन गाना है भोजपुरी में।
0: जी जी बता दीजिए।
1: पवन सिंह की आवाज में गाना है।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: ये चुम्मा ले जा गाल में संग दिलवा ले जा निकाल के।
0: अच्छा जी, हाँ है,
1: पवन सिंह का है ये भोजपुरी में। जी, और ये गाना डेडिकेट है अपने गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल ठाकड़ है, गोपाल ओझा है कगवासा से, और आपको भी।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी नमस्कार।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 91.4 FM में।
11: भारती जी, मेरे साथ मास्टर बोल रहे हैं धना से। बोलिए क्या हालचाल है?
12: मेरा तो बढ़िया है, आप अपना बताइए।
11: हम लोग का भी ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रहा है।
12: गर्मी तो है ही थोड़ा बहुत।
11: आज तो हम लोग का मौसम बहुत सुहाना हुआ है, एकदम बादल है, धूप नहीं है।
12: इधर भी मतलब थोड़ा रात को हवा चला था तो अभी फिलहाल थोड़ा ठीक है।
11: 190 बार कॉल लगाए हैं।
12: अच्छा जी, आज इतना कॉल लगाना पड़ा?
11: हाँ, कॉल लगाते हैं लास्ट में या तो फर्स्ट लगाए, एक बार बंद था फिर दूसरे बार लगाए तो बिजी बिजी तो सुन लगेगा कम नहीं लगेगा, फर्स्ट में लगता है ना तो सुन लगता है, बस एक दो बार कॉल में लग जाता
12: है। सब बताइए और सब ठीक है ना?
11: सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है, हम लोग काम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
12: चलिए बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: आज तो गाना सुनना है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मोहम्मद अजीज का एक गाना है, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, करबल में लुट गया है घराना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। यही वाला गाना सुनवा दीजिएगा मैडम जी। और सबसे पहले आपको सुनवाएंगे और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को।
12: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है, खाना खा ली।
1: खाना हो गया है आपका?
0: मेरा भी हो गया है।
1: तो और सब बताइए, और क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, धूप में बैठा है। लोग
1: धूप में
0: नहीं, यहाँ में मतलब धूप बहुत ज्यादा है पिछले।
1: अच्छा, हमको लगा धूप में बैठी है आप, वो भी गर्मी में।
0: नहीं।
1: अच्छा बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: दिल में प्यार तेरा उठो पुनीता, यही गाना सुना दीजिएगा।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
0: आपको, रेडियो रेंज सुनने वाली सब नेशनल।
1: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 एफएम।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
16: प्रणाम मैम।
17: प्रणाम,
16: क्या हाल बा?
17: ठीक बाप नहीं बताई
16: हमरो, ठीक है बा। आपन बताई हमने सके क्या पूछ ले बनी? हमने ठीक बनी सर, और लो बस ठीक रही लोगी ने ये बा भगवान से दुआ। कैसे रहोगे लोग के जरिए इतना आदमी के मनोरंजन होता है। आज के मौसम कैसे बा गोपालगंज के?
17: मौसम तो हल्का गर्मी तो बढ़ रही बा, क्या कहे, धूप निकल बा, गर्मी बा। वे
16: भारती जी ना, हमने तो एक बार बतियाले सत आदमी के पहचानी हम से। आज मन कैल है भोजपुरी में बात करल जाए।
17: कोनो बात नहीं है,
16: भोजपुरी में निमन लगे ला। अब आदमी बाहर रह जाला तो तनी भोजपुरी बोले में दिक्कत हो जाला।
17: कोनो बात ना, हमनी के बानी तनी भोजपुरी बोले
16: है। वे तो मान के चले की हिंदी गाना तो सब जगह सुने के मिल जाला, लेकिन गोपालगंज के सुनल जाये तो काहे हिंदी सुनल जाये, भोजपुरी सुनल जाये? भोजपुरी में ही बनिया गीत होला, ऐसा बात थोड़े भाई सब खराब होगा।
17: ना ना, भोजपुरी में भी अच्छा अच्छा गीत होगा।
16: तो आज हमारा गाना सुना दी।
17: बता दी,
16: बबीता सागर के ही रही आज भी। ना जी, अब तोहरा दुनिया आज बुझाई बा।
17: अच्छा,
16: धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली
17: गाना सुना।
16: हाँ, सुना दो।
18: किस

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
1: मैं फरोज अंसारी बोल रहे हैं जी। हम गाना सुनना चाहते हैं।
0: ओके, और कहाँ से हैं आप?
1: हम बिहार से, बेतिया जिला से।
0: ओके, बता दीजिए गाना सुनना है आपको।
1: हिंदी गाना सुना दीजिए कोई सा, अच्छा आपको जो अच्छा लगेगा।
0: आपको अपना पसंद बताना होगा। आप अपनी पसंद बता देते तो अच्छा होता, क्योंकि कॉल आपने किया है तो पसंद तो आपकी भी होनी चाहिए ना।
1: डाक दीपर का गाना चाहिए हम।
0: उसमें का कौन सा सॉन्ग, मतलब डाक दीपर का कौन सा सॉन्ग?
1: उसमें से कोई भी गाना होगा अच्छा सुना दीजिएगा हमको। जी जी।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: जी, मेरा रियाज भाई है। आज हम लोग ड्यूटी पे जाने वाले थे, हम नहीं गए। हाँ, छुट्टी में हम गाना सुनना चाहते हैं। जी
0: चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जात, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4। वालेकुम अस्सलाम,
14: क्या हाल है?
13: मेरा बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? नाम बता दीजिए।
14: मैं मोहम्मद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से।
13: तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
14: ड्यूटी हो रहा है मैम, इतना गर्मी लग रहा है, पंखा चलाने के बाद क्या बताएं।
13: गर्मी तो है,
14: बहुत गर्मी पड़ गई
13: जी।
14: लगता है गाँव छोड़ के भागना पड़ेगा मेरे को पुणे, गर्मी की वजह से। पुणे में अच्छा रहता है मौसम, में हमेशा गर्मी बिल्कुल नहीं लगती,
13: वहाँ पे तो मौसम थोड़ा अच्छा रहता है।
14: पुणे में एकदम जिंदा गर्मी रहता है, शरीर से पसीना नहीं चलता है।
13: हम्म,
14: साफ नाश्ता पानी

0: हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: शैलेश कुमार, बड़ापंखी से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
0: हम भी ठीक।
1: मौसम
0: तो अभी इधर गर्मी है।
1: मौसम गर्मी तो इधर भी है। आज गाना सुनवा दीजिएगा मुझे, कल तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, याद तेरी आएगी तो मैं क्या करूँगा।
0: चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: अपनी वाइफ को, आपको, पूरे परिवार को, तमाम रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 8784-18744।
3: ब्रेक के
12: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: नमस्ते मैम।
13: नमस्ते,
14: मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम प्रिया है
13: जी। आप प्रिया जी कहाँ से हैं?
14: दिल्ली से।
13: अच्छा जी,
14: दिल्ली से। तो मुझे गाना सुनना है।
13: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
14: देख के बताई थी कैसा लग रहा है, राजा राम फिल गुंडिया है।
13: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
14: हाँ।
13: बता दीजिए।
14: मेरी मम्मी, चाचा, मामा, पापा और आपको।
13: ओके ओके, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
14: थैंक यू।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: कौन बोल रहे हैं? भारती जी के सोनी जी
0: भारती
1: मैं धर्मेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: बीच बजा दिया तुमने बड़ी बढ़िया खिड़की खोल दूंगी एक गाना सुनवा दीजिए।
0: काम किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ अपना रंजीत तिवारी है वरुण पांडे है शुभम तिवारी है।
0: ओके गाना प्ले करती हूँ सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM। नमस्कार।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
16: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
15: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
16: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
16: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
16: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
17: Now pick it up, pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
17: Pick it up, pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
19: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
20: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
21: हेलो
22: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
21: नमस्कार मैम।
22: नमस्कार,
21: आप कैसी हैं मैम?
22: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
21: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आगे लोग कैसे हैं?
22: सब कुछ ठीक है।
21: और मौसम उधर कैसा हो रहा है?
22: इधर का तो मौसम अभी गर्मी पड़ रहा है, धूप निकला हुआ है थोड़ा, तो आज मौसम मतलब हवा चल रहा है तो उतना धूप समझ में नहीं आ रहा है,
21: हवा थोड़ा चल रहा है। तो गाना सुना दीजिए, आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। गाना सुना दीजिए, सनम का हर लबो पे सनम तेरा नाम आए।
22: एक बार और बोल दीजिए,
21: हर लबो पे सनम तेरा नाम आए, सनम फिल्म का गाना है।
22: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
21: अब रेडियो रिमझिम जितने सुन रहे हैं सभी श्रोता श्रोताओं से, और मैंने एक अनुरोध है
22: जी बताएं,
21: सभी श्रोताओं से कि श्रोता जितने भी सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम, वो अपने छत पर थोड़ा पानी रखे, उसके चिड़िया को पक्षी उक्षी को थोड़ा खिलाए पिलाए, गर्मी बहुत है, घड़ा में या कोई बर्तन में भी पानी रखे ताकि चिड़िया पक्षी को पानी पीने में सहूलियत हो।
22: जी जी मैम, और सब ठीक है?
21: जी जी जी मैम, सब बढ़िया है। आपका नाम सर? मैम
22: मेरा नाम भारती है, आपका नाम क्या है?
21: जी मैं पप्पू कुमार बोल रहा हूँ, पड़ारौना से बढ़रिया, पड़ारौना बढ़रिया से।
22: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
21: थैंक यू मैम।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
0: भारती जी बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, नमस्ते जी। घंटा से नको लगा रहे
1: हैं। अच्छा जी,
0: अभी नहीं रहा था, खाली दिया था, खाली दिया।
1: आज कॉल आए आ रहे हैं बहुत ज्यादा इसीलिए।
0: तो कैसे हैं आप?
1: हम भी ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: अरे हम लोग क्या बताएं, धूप में बहुत हालत बिगड़ जाता है।
1: धूप तो है ही,
0: इतना धूप है कि लाजवाब है, बिल्कुल धूप लाजवाब होता है आजकल।
1: धूप तो बहुत तेज निकल रहा है, ये धूप से बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो रहा है।
0: कल तो सोनू जी से बात हुआ था, ये जानना भी सुनाई थी सोनू जी।
1: आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज तो हमारा फरमाइश है, नाम ही भूल जाते हैं, सोचते हैं कि बताएंगे बोर पर जाते।
1: कोई नहीं, आराम से याद करके बताइए।
0: इनका नाम क्या बोलते हैं? दाता। दाता फिल्म का जो नहीं होता है गाना, वो विदाई वाला गाना है। उसी का
1: वही सॉन्ग सुनना है ना?
0: हाँ, वही सॉन्ग सुनना है।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: पहले तो आपको, सोनू जी को और खावे रामा जी भाई जी को। ठीक है, तो वही सुना दीजिएगा।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 9.4 एफएम।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-556-97-644।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
11: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाया डाला अपना मेडिकल हॉल पे।
10: कैसे हैं आप?
11: बहुत है। सोनी मैडम बोल रहे हैं?
10: नहीं नहीं।
11: अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ तो सुनिए ना, हमको गाना सुनाइए। नदिया के पार फिल्म से कौन दिशा में लेकर चला रे बटैया।
10: सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
11: हाँ चाहेंगे। अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और गुमनिया के फौजी भाई रिटायर हैं, 1962 का लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको भी सुनवाना, कन्हैया प्रसाद को सुनवाना चाहता हूँ।
10: तो और सब बढ़िया है ना?
11: हाँ अपना सुनाइए ना।
10: हमारा भी ठीक है।
11: हाँ हमारा ठीक है। मौसम बहुत गर्म है, बहुत मौसम खराब हो रहा है। अब देखिए बरसात कब से शुरू होता है, मानसून अभी नहीं आया। बहुत मेहनत करने पर लगता है आपके यहाँ फोन।
10: अच्छा
11: बहुत व्यस्त बिजी बता रहा था।
10: आज कॉल आए हैं बहुत सारे।
11: हाँ ठीक है सुनवा दीजिएगा।
10: ठीक है फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं, आईआरएमपी से।
1: नमस्कार
0: जी मैम, बस बैठे थे मैम, फोन लगा रहे थे, फोन बहुत मुश्किल से लगा मैम, एक घंटा हो गया फोन लगाते हुए, बहुत नंबर बिजी जा रहा है। जी जी जी मैम,
1: कॉल आ रहे हैं ना, इसलिए नंबर बिजी जा रहा है, लगातार कॉल आ रहा है।
0: तो मैम चाय नाश्ता हो गया मैम?
1: हाँ हाँ, हमारा हो गया, आपका हो गया?
0: जी अभी तो नाश्ता हुआ मैम, हम सोचे अभी तो 12 बजी है, थोड़ा फोन आउट ट्राई करते, फिर 12:30 बजे खाना खाने चले जाएंगे मैम। तो अभी बैठे थे, सिर्फ फोन कौन भी लगा रहे थे, फोन लग गया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, चलिए तो बढ़िया है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जान, और गाने के बोल है बेईमान किया रे बड़ा जुर्म किया रे, यही गाना सुनना चाहते हैं और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइल।

0: वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
2: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू, सो SMS फरमाइश के साथ। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है हर रोज की तरह और गाने के साथ इंजॉय करना है। ध्यान रखना है कि पुराने गाने जब भी फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाया जा सके, आपकी फरमाइश को रोका ना जाए। यदि आप पुराने गाने की फरमाइश करते हैं तो ही फरमाइश पूरा करने का चांस रहेगा, और नहीं तो आपकी फरमाइश को पेंडिंग में रखा जाएगा और मौका मिलने पर थोड़ा सा मौका दिया जाएगा। और यदि आप पुराने गाने की फरमाइश करते हैं तो आपकी फुल चांस रहेगी कि आपके गाने प्ले होगी तो ही होगी। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। फिलहाल पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय, मैं शिल्पी और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइशी तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे। जी सर जी, मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और मैसेज करती हैं अनामिका चौधरी, प्रेमनगर बस्तर राजा लालगंज से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने की फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, और गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल गाने की फरमाइश पूरा करने की कोशिश है और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, सर जी मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं सुजीत कुमार, प्रेमनगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है और बने रहे हमारे साथ। कमलेश जी, हमें लगता है कि इस सप्ताह आपकी फरमाइश पूरी की है, यदि नहीं पूरी हो हुई होगी तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग सप्ताह में एक ही बार गाने की फरमाइश करें और दिन दूसरों को भी मौका दें ताकि जो भी श्रोतागण आज छूट गए उन कल सुन सके, जो कल छूट गए वो परसों सुन सके, और जो बीते हुए कल में छूटे हैं वो आज सुन सके। तो ऐसे अपने को सोचना है और दूसरों को भी मौका देना है। फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और पहले गाने की फरमाइश पूरी करते हैं शिल्पी।

0: की और गाने की फरमाइश करती हैं, नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई लहो। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और डेडिकेट करती हैं, लिखी हैं आपके अंडे सबीना जी, निशा भारती और रोशनी जी, बाकी सबको, बिल्कुल सब कोई सुनेगा आपके गाने के साथ और थोड़े बहुत और इन्जॉय करेगा। काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश आपके तरफ से पहुंचा हुआ है और ये गाने सुनने में बहुत सुकून मिलता है, मज़ा भी आता है। तो प्ले करते हैं आपके गाने और सुनते हैं हम सभी रेडियो रामछिम 90.4 FM पे, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ।
1: बस एक बात हमार मान ले, ई चिरकुट पहनल छोड़ के मस्त लुग्गा पहन के घूंघट निकाल के हमरे सामने आ जाए तू, साला हमार करेजा जुड़ा जाए।
2: ए जी

0: अरे देखत का पानी, आई खाना खा ली।
1: अभी प्यारे संग रेडियो 96.4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी और सो चल रहा है SMS फरमाइश का। और यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। हाँ, फ़ोन नहीं करना है। आप जिस नंबर पर फ़ोन करेंगे उससे बेहतर है कि आप उसी समय मैसेज टाइप कर दें और सेंड कर दें, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा की जाएगी। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं, और आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप भी जुड़े और अपने गानों के साथ इंजॉय करें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने वाले मैसेज बता दें, और अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि राधे राधे मिथुन शर्मा उत्तर टोला महादा गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। नदिया के पार का गाना सांचे कहीं हमरा अंगना में, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और थोड़े बहुत आपने इधर उधर गाने के नाम बताए हुए हैं और हम समझ रहे हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, तो सुजीत जी आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची और आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक्स, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि तुम लाख छुपाओ सीने में एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़का है आवाज़ यहाँ तक आई है। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई ल हो। सुनो भाई सुपर सॉन्ग के शुरुआत और इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी, और बन रहे हमारे साथ दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि आई सर में दीपराज और मुझे गाना सुनना है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है और आपकी फरमाइश भी पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल अगले गाने को प्ले करते हैं और नदिया के पार मूवी से सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

टुडे एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं, फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एसएमएस फरमाइश में। और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं, तो आगे भी हम फरमाइश पूरा करें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग सुना सकते हैं क्या, तो क्यों नहीं। यदि आप लोगों का फरमाइश पहुँचेगा तो हम ऐसा थोड़ी है कि किसी का सुनाएंगे किसी का नहीं सुनाएंगे, सबकी सुनाने के प्रयास रहेगा। हाँ, यदि आपके सॉन्ग एक सप्ताह में नहीं बजे होंगे तो ही, अब एक सप्ताह में दो गाने तो हम नहीं सुना सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी, और इन्होंने गाने के फरमाइश किए हुए हैं और गाने के फरमाइश में नाम नहीं बताए हुए लेकिन लिंक भेजे हुए हैं। तो आप सभी से कहना यही है कि आप लिंक भेजते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, आसानी तो पहले थी लेकिन अभी के तत्काल के समय में हमें दिक्कत होती है। आप लिंक के साथ साथ नाम भी बताएं ताकि आपकी फरमाइश पूरा करने में सुविधाजनक हो सके हमें, और आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इन्होंने गाने का बोल दिया है, मारे कटारे मर जाऊं कि तेरे बिना जी नहीं पाऊं, और इस गाने को डेडिकेट करते हैं, लिखे हुए हैं आपको, सबिता जी, बबीता जी, सरफुद्दीन भाई, पंकज भाई, राघव भाई जी को, और गुड़िया जी, सफाक जी, काजल जी, संतरा जी, सलेहा जी, सचिदा जी, आशा जी, सबिता जी, साजिदा जी, रानी जी, रोशनी जी, पायल जी, गुलफाम जी, नेहा जी, हिन्ना खान जी, शाहजहाँ जी, ब्यूटी परवीन जी, गट्टा शर्मा जी, सगीर अंसारी, मुकेश भाई जी, तूफानी जी, आज़ाद अंसारी जी, रोजाद्दीन भाई, अफसर भाई, जावेद आलम जी, उपेंद्र भाई जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, वीरेंद्र भैया जी को, और सभी दोस्तों और सखियों को। तो चलिए आपकी सखियाँ सुनेंगी और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ। दिलीप राम जी सिहोरवा से जुड़े हुए हैं और आप आगे से जब भी मैसेज करिएगा तो लिंक के साथ साथ नाम भी बताइएगा कि कौन से गाने सुनने हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल, इसके बाद हो सके तो आपकी भी फरमाइश हम पूरा कर दें। फिलहाल आप बन रहे हैं हमारे साथ

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और इस गाने की फरमाइश करने वाले थे दिलीप राम जी, और इनके फरमाइश पे इस गाने को सुन रहे थे। और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए, और आगे लिखा गया है कि हाय क्या हाल है शबीना फ्रॉम दुलुलिया से, और कहती हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, और जब आप यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्यों बताऊं। बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि करते हैं हम तुमसे मोहब्बत, हमारी खता या माफ़ करना है, अगर बदनाम मोहब्बत हमारी, तुम प्यार को बदनाम मत करना। सनो भाई नमस्कार, और गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रामशम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि आपके तरफ से दो दो नाम से मैसेज पहुंच रहा है, और एक नाम आ रहा है अनामिका चौधरी और एक नाम आ रहा है आपका, तो कौन से गाने हम सुनाएं, आपके या उनके, आप लोग अपने में राय कर ले, फिर आप दोनों में से किसी की गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं दीपराज जी, और इन्होंने गाने की फरमाइश किए हुए हैं, तेरी यादों जो आएगी मुझे तड़पाएगी। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस मैसेज को करते हैं बीत बिरवा से, तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रामशिम 94.4 एफएम पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म। और फिर एक बात पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। और सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है। और मैसेज करने वाले सुजीत कुमार, प्रेमनगर बस्तरा, राजा लालगंज, मिर्जापुर से, और इन्होंने भी इसी गाने के फरमाइश किए थे जो अभी हम सभी सुन रहे थे। चलिए, और दो श्रोताओं की फरमाइश एक रही, और पहले वाले श्रोतागण जिनके नाम से इस गाने को प्ले किया गया था वो दीपराज जी थे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, चाहा है तुझको, चाहूँगी हरदम। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नामका जी का सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल, उनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और उनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं, सुपर गाना वा भाई। सविता चौहान वो छपरा से मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्रिय हमारे आरजे संदार जंदार सोनू बाबू कैसे हैं, और हमें भी जगह हो तो सॉन्ग सुना देंगे फिल्म जंजीर से। रफ़ी जी, लता जी के शोर है, सॉन्ग है दीवाने हैं दीवाने को ना दे आपको। तो बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और बन रहा हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू, आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए दीपराज जी। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे उनकी मैसेज मिल नहीं रही है, और उनके तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, गाने का फरमाइश दिया गया है, लिखा गया है कि जीता था जिसके लिए मरता था। इस गाने के फरमाइश और मैसेज करने वाली अनामिका चौधरी जी हैं। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे।

0: ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो झिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी, आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। और स्टूडियो घड़ी में 12:04 हो चुके हैं और अभी से 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98527288291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए और भेज दीजिए हमें अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। और सभी लिसनर से मेरा यही निवेदन है कि आप जब भी मैसेज करिए अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए साथ में, अगर वॉइस भेज रहे हैं तब तो बिल्कुल करिए और अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश करिए। जो भी भोजपुरी गाने की फरमाइश कर रहे हैं तो भोजपुरी गाने अगर नहीं सुने हैं तो फिर उस गाने की फरमाइश नहीं करिए, और जो भी गाने की फरमाइश करिए बढ़िया करिए। फिलहाल आप सभी मैसेज करिए, जब तक आपके मैसेज पहुँचे हैं तब तक हम एक गाना इंजॉय करते हैं रेडियो झिमझिम 90.4 FM पे। फिर मिलते हैं इस गाने के बाद आप सभी से और शामिल करते हैं आपके मैसेज को।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आज सोनी। आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँच चुके हैं, हमारे काफ़ी लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं, और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। तो चलिए व्हाट्सएप की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कौन कौन लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनू भाई है, हम प्रमोद गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं निहिया के फुलवा गाना सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और कॉल भी पहुंचना शुरू हो चुका है। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नजरें मिले तो प्यार हो जाता है, पल के उठे तो इजहार हो जाता है, ना जाने क्या कशिश है चाहत में कि कोई अनजान भी हमारी ज़िंदगी का हकदार हो जाता है। और मैसेज के साथ है मनीष रिजाक, फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी नजरिया बदल गया, ना शकल बदली ना बदला मेरा किरदार, बस लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। और लिख रहे हैं, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून जय माता दी मैडम जी।

गाने चल रहे हैं और प्यार नहीं करना, और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका, लिख रहे हैं कि फिर भी जुड़ गए हैं एक बार और नाम नहीं मेंशन किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है कहाँ से। और मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम ज़रूर मेंशन किया करिए। और आगे यहाँ रोहित जी हैं देहरादून से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी कैसे हैं आप, और मैं जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, नाइस ओपनिंग सॉन्ग। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अनिल जी जुड़ चुके हैं छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सोनी जी, और बेहद ही खूबसूरत गीत शो की शुरुआत हुई। और आप बताइए आप कैसी हैं। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो नमस्ते मैम, मेरा नाम मुन्ना ठाकुर है, जादवपुर से हूँ, अभी कुरेसिया से जुड़ रहा हूँ। टाइम का बहुत अभाव है और वहाँ पर टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास अभी टाइम 8:30 बज रहे हैं और इसलिए हमें टाइम नहीं मिला जुड़ने के लिए। और हमको गाना सुनना है दुश्मनी मूवी से, जाने मन तुम खूब हो। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे यहाँ राकेश भारती जी बक्सर से जुड़ चुके हैं, संजय यादव कोलकाता से, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि आज ओपनिंग में ही गर्दा उड़ा दिए मैम, गजब का सॉन्ग, और हो गजब का सॉन्ग लाया आपने, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे लिखते हैं कि चाहत वो नहीं जो जान देती है, चाहत वो नहीं जो जान देती है, चाहत वो है जो मुस्कान देती है, ऐ दोस्त चाहत तो वो है जो पानी में गिरा आंसू वे पहचान लेती है। क्या बात है दिनेश जी। और आगे यहाँ मिजाजी यादव जुड़ चुके हैं कल्याणी चौक जदा वैशाली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, मोहरा मूवी से गाना सुनना है, ना कजरे की धार, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं प्रसन्नजीत जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, और भी सारे बहुत सारे मैसेज है, शामिल करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, यानी पहली फरमाइश की तरफ। और पहली फरमाइश जो हमारे पास है, जाने मन तुम खूब हो, और गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है क्रोएशिया से मुन्ना ठाकुर है। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने फरमाइश को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी क्रोएशिया से मुन्ना ठाकुर जी की और उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सॉन्ग सुनाने के लिए। और यहाँ पाजी यूपी चौहान से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, लिख रहे हैं कि ठीक है मैम बहुत खुश हैं आप और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी हाजिर लग चुकी है। और आगे यहाँ राम कुमार जी जुड़ चुके हैं बालाघाट एमपी से और गाने की फरमाइश के साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। विषाद मास्टर जी जुड़ चुके हैं दनाव से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि रोशन टेलर के सभी लोग जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज हैं। और रसिया से विजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और विशाल पांडे जुड़े, मनीष पांडे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि आइए आपका इंतजार था आप आई बाहर आया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनेरिया हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे अपना। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से, और गाने की फरमाइश है तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देखो ना। तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दिए, और फरमाइश करने वाले हैं श्री सागर दीवाना जी। तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में हम बात करेंगे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। तो दोस्तों, सरकार द्वारा HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई है और इसके बारे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और जिज्ञासाएं हैं, खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर मिलने वाली अलग अलग जानकारियों के कारण कई बार भ्रम की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में आज हम आपके द्वारा भेजे गए सामान्य सवालों को उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब साझा करेंगे आप सभी से। तो अगर आपके मन में भी HPV टीके को लेकर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भेज सकते हैं हम तक और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब जो है आसान भाषा में आपको सही से समझा सकें।

छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है, और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सभी को मुहर्रम की शुभकामनाएं दीजिएगा। नमस्ते मैम, हमारा भी आज लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुके हैं। उमाशंकर मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इंद्रदेव जी हैं, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमारा भी गाना सुना दीजिए। प्रमोद गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गाने की फरमाइश भेज दिए हैं मैम रेडियो रिमझिम पर, और कोरे कागज़ पे लिखवा ले गाने की फरमाइश के साथ है। सुनील कुशवाहा जी मैयर एमपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। और यहाँ आगे और भी सारे मैसेज है शामिल करेंगे, उससे पहले अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश है खेसारी लाल की आवाज़ में कोई भी गाना सुनना है जो कि नया है हो। और मिस्टर कुमार जी जुड़े हुए मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश मोतिहारी जिला से पहुंचे थे मिस्टर कुमार जी जुड़े हुए थे और इन्होंने गाना सुन लिया। और यहाँ बिमल कुमारी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप सब भी जुड़ सकते हैं शो में जुड़ने के लिए, माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ रुख करेंगे तो अनीश यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है जीना है तो हंस के जियो, बिल्कुल फरमाइश है प्ले करेंगे। और यहाँ कॉल वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, भाई आप लोग भी कॉल करिए। कॉल करने के लिए नंबर है 7277165696 पे आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल पहुंच चुके हैं तो चलिए बात करते हैं कौन है कहां से, जानते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
1: हम रामाजी प्रसाद बोल रहे हैं
0: जी, क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा। अरे यार भी लगा लो मोहरम के
0: अस्तरा वाला,
1: हाँ लेकिन सरकार के यूज में ऐसी लोड़ा की हथियार निकल ले आओ तो पूरा पर बंद लाग ले बाकी हथियार क्यों निकल ले आओ, खाली लाठी डंडा ले आओ तो
0: जी जी
1: तो गाना सुना दे। जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए।
0: और डेडिकेट भी रही
1: जितना रूपन का सब कुछ के और वो के हम
0: जी। तो गाना प्ले कर दे ले बानी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करने।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बजार।
8: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, और हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सही लाभकारी के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास है, HPV टीका आखिर किस लिए लगाया जाता है? HPV यानी ह्यूमन पोपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो आगे चलकर कुछ गंभीर बीमारियों और खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। HPV टीका शरीर को इस वायरस से सुरक्षा देने में मदद करता है, इसलिए ये टीका भविष्य में होने वाले खतरे को कम करने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता है। और उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके मन में भी HPV को लेकर कोई सवाल है तो आप हमसे अपने सवाल को साझा कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और हाँ 12:41 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। सविता देवी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। राकेश भारती जी हैं, लिख रहे हैं कि हमारा गाना भी बजेगा, बिल्कुल बजेगा आपका भी। और अहमद अली जी हैं सरिया वार्ड नंबर 1 से, बहुत बहुत स्वागत आपका, लिख रहे हैं जुमा मुबारक सभी को, बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं। और यहाँ लिख रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग और मैसेज करने वाले हैं इंद्रदेव जी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम आप सभी को दिल से नमस्ते, और आपको भी नमस्ते मैसेज करने वाले हैं प्रमोद गुप्ता जी, दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मनोज कुमार है करेरिया से, लिख रहे हैं हमारा भी गाना है बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो मैहर MP से अनिल कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, सॉरी सुनील कुशवाहा जी, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, और गाना है कोरा कागज़ पे लिखवा ले। तो आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दीजिए, कर दिए हैं, एंजॉय करें अपने गाने को रेडियो रिमझिम पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी मैयर एमपी से सुनील कुशवाहा जी का, और इनके तरफ से मैसेज है लिख रहे हैं दिल से धन्यवाद गाना बजाने के लिए। आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, 2 बजे के बाद मिलते हैं, और अमल अली जी हैं बिल्कुल। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं, हाय मैम गुड आफ्टरनून, मैं भी जुड़ गया हूँ। गोविंद कुमार जुड़े हुए हैं विक्रमपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी ज़िंदगी से जीवन देती है माँ। और धर्मेंद्र यादव जी हैं गोपालपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि भगवान क्या है माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। और धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचा हुआ अनिश यादव है, और उनको सुनना है गाना जीना है तो हंस के जियो। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, अपने गाने को एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, और हम बात कर रहे हैं सोया सही लाभ कई के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। तो हमारे पास अगला सवाल है, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जी हाँ, HPV टीका सुरक्षित है। इस टीके को उपयोग दुनिया के कई देशों में वर्षों से किया जा रहा है और लाखों बच्चियों एवं किशोरियों को ये टीका लगाया जा चुका है। भारत में भी विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार इसे दिया जा रहा है। टीका लगने के बाद कुछ लोगों को इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, सूजन या हल्का बुखार हो सकता है, जो सामान्य है और कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की बजाय सही जानकारी पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो कहता है सुनो।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे। और मैसेज है, धनेश मिश्रा जी हैं, लिख रही कि लड़कियाँ कहते हैं कि सभी लड़के पागल होते हैं, फिर कहती हैं हम लड़कों से कम हैं क्या। और ये आखिर वो लड़कियाँ हैं कौन जो कहती हैं, मैंने तो आज तक नहीं सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनेश मिश्रा जी। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले यहाँ सविता देवी जी हैं दिल्ली से, लिख रही हैं कि वो गाना बजा दी मैम, तो कौन गाना बजा दी, गाना के नाम लिख के भेज दी, ज़रूर बजा दें या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि धुरंधर मूवी का सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिए। मैम आप कहाँ से हो, गोपालगंज से ही हो? जी हाँ, मैं गोपालगंज से ही हूँ और मोतिहारी ज़िला से मिस्टर कुमार जी हैं। तो मिस्टर कुमार जी, आपके गाने की फरमाइश थी खेसारी लाल की आवाज़ में, जो कि हमने प्ले कर दिया है। और अब दूसरे गाने की फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद ही पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश जो है हमारे पास पहुंचा हुआ है कररिया से, और मनोज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, इनको सुनना है गाना, वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं ये।
1: नमस्कार जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और एक गाना सुनवा दीजिए, चाहा है तुझे चाहेंगे।

0: 94.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, मनोज जी की फरमाइश थी कररिया से, और इन्होंने गाना सुन लिया। यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो संजय यादव जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत। और लिख रहे हैं, क्या हाल है मैम? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और इंद्र देव जी की तरफ से भी वॉइस मैसेज पहुँच चुका है फरमाइश के साथ एक, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अनिल कुमार जी है दरभंगा से, नमस्ते सोनी जी, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करते हैं कौन है कहाँ से, देखते हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलबम का गाना सुनवा देंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: विजय बोल रहा हूँ, जल्दी से जनता बाजार से, बिहार से।
0: जी क्या हालचाल है विजय जी?
1: ठीक है।
0: और बोलबम का कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: नया वाला गाना सुना दीजिए।
0: किसकी आवाज में?
1: ठीक, खेसारी लाल का।
0: खेसारी लाल की आवाज में। और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ बोलिए,
0: डेडिकेट भी करिएगा।
1: नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हैं जी?
0: गाना आप किसके साथ सुनना चाहते हैं?
1: खेसारी लाल के।
0: खेसारी लाल का गाना आप अकेले सुनना चाहते हैं, कोई और भी है साथ में सुनने वाला, ये पूछ रहे हैं हम।
1: अच्छा, मैं आए
0: फ्रेंड है, नया गाना सुनना है खेसारी लाल का।
1: जी जी,
0: नया कोई गाना तो अभी आया नहीं है।
1: गाना सुना दीजिए।
0: चलिए तो प्ले कर दिया है गाना।
1: ओके
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: तो दोस्तों, गीतों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे थे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास अगला सवाल है, क्या HPV टीके का कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो विशेषज्ञों के अनुसार HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और इससे गंभीर दुष्प्रभाव होने की संभावना बहुत कम होती है। कुछ लोगों को टीका लगाने के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, सूजन, लाली माथा, कान या हल्का बुखार महसूस हो सकता है, जो सामान्य है और आमतौर पर थोड़ा समय में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर टीका लगाने के बाद कोई असामान्य या गंभीर परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करने चाहिए। तो दोस्तों, सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा करना बेहद जरूरी है।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 1:09 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी मेरा भी अटेंडेंस लगा दीजिए। और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, मैं प्रशांत प्रम बोकारो से, और मुझे भी गाना सुनना है मोरा फिल्म से ना कर्जे की दाल। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारी भाभी के फरमाइश आई कि ना, तभी तक तो बिल्कुल नहीं कि आई भाभी के फरमाइश, और जिसे ही आई हम प्ले करें के पूरा कोशिश करें। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारे साले साहब रुस जाएंगे तब बजाइएगा काम है। बिल्कुल नहीं, आपके साले साहब रुस जाएंगे उसके बाद नहीं बजाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। और राकेश भारती जी हैं बक्सर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि आज मेरा भी गाना बजा दीजिए। नमस्ते मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बिल्कुल, और सोनू कुमार जी हैं गौसिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश है ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है बोकारो से और प्रशांत जी हैं। तो चलिए अपने गाने को एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। Thank you.

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, प्रशांत जी की फरमाइश थी बोकारों से और इन्होंने गाना सुन लिया है। और आगे बढ़ेंगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज है लिख रहे हैं कि भाई को धन्यवाद गाना बजाने के लिए। और संजय यादव जी हैं दुबई से और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी नमस्कार प्रणाम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और सुनकर मैसेज कर दिए। गुरु नानकपुरा बटीरा पंजाब से हैं किशोर सबलनिया जी, सवित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि फिल्म नगीना से गीत सुनना है, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। और बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रमोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से और इनको सुनना है गाना नहीं आके फुलवा। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, अपने गाने को इन्जॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: तो श्रोताओ, फिर से जुड़ चुके हैं आपसे रेडियो रमजिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और बात कर रहे थे सेहत सही लाभ के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। और HPV टीका से जुड़ी कई सवाल हैं और अफवाह है जिसको हम साझा कर रहे हैं आप सभी से। और हमारे पास अगला सवाल है, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रमुख कारण बन सकता है जो केवल महिलाओं में होता है। इसलिए बच्चियों को कम उम्र में ही संक्रमण के संपर्क में आने से पहले ही यह टीका लगाने से भविष्य में इस बीमारी के खतरे से काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही कारण है कि कई टीकाकरण कार्यक्रमों में बच्चियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, टीकाकरण का उद्देश्य भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना है। आप सुनते रहिए रेडियो रमजिम 90.4 FM। फिर मिलते हैं आप सभी से।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 1:23 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर सॉन्ग। और उमा शंकर मिश्रा जी है दिल्ली से आगे एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग और तुझे साफ लिखूंगा, हकीकत में तो मुझे मिलेगी नहीं पर एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा। और मैसेज के साथ है सोनू जी गौसिया से बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश है बक्सर से राकेश भाटी जी जुड़े हुए और इनको सुनना है गाना दैया दैया दैया रे। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दी है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। इंजॉय करिए अपने गाने को।

और यहाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज है, विवाह फिल्म से गाना सुनना है, सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं नाम है इनका, शत्रुघ्न गुप्ता जी, तो आपको विवाह फिल्म से कौन सा गाना सुनना है जरूर बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे राकेश भारती जी की फरमाइश थी बक्सर से, और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे अपना। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कब से इंतजार कर रहे हैं मैम। और अमरेश कुमार जी जुड़े हुए हैदराबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इंतजार कब से कर रहे हैं, आपका मैसेज दिख ही नहीं रहा है, आपका मैसेज आया ही नहीं है, तो फिर इंतजार कैसे कर रहे हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचा हुआ है, और गाना सुनना है मार दम गोली छितरा जी बतू। और ये पता नहीं कौन सा गाना है, मैं तो सुनी नहीं हूँ। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका शत्रुघ्न गुप्ता जी, तो आप अगर ये गाना सुने हैं तो मुझे बताइए कि ये गाना सही है या नहीं, फिर मैं आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे। और क्योंकि गाना अगर जातिवाद या फिर जो भी रंगदारी वाला अगर कोई गाना है तो फिर गाना आप चेंज कर दीजिए, मैं नहीं जानती हूँ इस गाने के बारे में, तो एक बार कंफर्म करिए कि गाना कैसा है, फिर हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज पहुँच गया, लिख रहा है कि गाना सुनाने के लिए हरिंदर जी एंड पप्पू जी दोनों खुश हो गए हैं, डांस कर रहे हैं, और थैंक यू सोनी दी गाना बजाने के लिए आपको, और गुनगुना दी और खुश हैं हम लोग। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर, उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से। और अगली फरमाइश हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: मैडम जी नमस्कार, गाना सुनने के बाद पावर ना होला बाबू खाली झमकावला से, हम राजू बाबू बहरीन से बात करते हैं, गाना सुना दी।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

90.4 रेडियो रिमझिमसुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ काफ़ी सारे हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है, लेकिन अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो है हमारे पास इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचा हुआ है शत्रुघ्न गुप्ता जी की तरफ से, तो चलिए आपके भी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दें। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे शत्रुघ्न गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, बाल कुमार सहनी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं निरहुआ रिक्शा वाला का गाना सुनना है और नेपाल से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरहुआ रिक्शा वाला से कौन सा गाना सुनना है ज़रूर बताइए। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, हम भी जुड़ गए हैं और कल का फरमाइश बाकी है, आज उसका बारी है। बिल्कुल, और कौन सा गाना है एक बार फिर से बता दीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल, आपकी गाने की फरमाइश है और प्ले करेंगे। अमरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि हेलो, और नाम मेंशन नहीं है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अम्बे मॉडर्न टेलर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। गणेश कुमार जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, लिख रहे हैं कहालबादी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। लेकिन यहाँ कॉल पहुँच चुका है, तो चलिए अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से लेते हैं, कौन है कहाँ से जानते हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में,
1: गाना सुनने के लिए
0: जी। गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: विजय महतो बोल रहा हूँ, बिहार से बोल रहा
0: हूँ जी। आप अभी कॉल किए थे ना, तो फिर से आप ही कॉल किए, और भी लिसनर है उन्हें भी मौका दीजिए कॉल करने का।
1: एक गाना सुना दीजिए।
0: तब से देख रहे हैं कि आप ही का कॉल आ रहा है,
1: एक सुना दीजिए गाना।
0: नहीं, ये नहीं हो सकता, एक शो में एक ही बार गाना बज सकता आपका, ठीक है।
1: दिन में एक ही बार गाना बजेगा?
0: दिन में एक ही बार नहीं, कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम में एक ही बार गाना बजेगा, ठीक है। और आप बार बार कॉल नहीं करिए, ऐसे बाकी लिसनर का कॉल नहीं लगेगा और वो भी परेशान होंगे।
1: ओके ओके
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अगली फरमाइश हम व्हाट्सएप के माध्यम से लेते हैं, और व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इंद्रदेव जी की तरफ से।
2: मैडम जी मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए।
0: और यहाँ गाना है, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
8: और फिर से हाजिर है अगले सवाल के साथ रेडियो एमसीएम 90.4 FM आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। बात कर रहे हैं हम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत HPV टीका से जुड़ी कुछ सवालों की जवाब साझा कर रहे हैं आप सभी से। और यह अगला सवाल है कि क्या HPV टीका लगाने से भविष्य में माँ बनने पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, HPV टीका लगाने से भविष्य में मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया भर में हुए वैज्ञानिक अध्ययनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस टीके का प्रजनन क्षमता या गर्भधारण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। यह टीका केवल शरीर को HPV संक्रमण से सुरक्षा देने में मदद करता है। तो दोस्तों, अफवाहों और गलत जानकारियों से बचें और किसी भी शक की स्थिति में डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मियों से सही जानकारी जरूर लें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ पढ़ेंगे और मैसेज लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अनिल कुमार जी दरभंगा से। तो अनिल जी, हम बता दें आपको कि आपकी गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे और अगली फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद पूरा होगा। सो में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम कौशलपुरी में से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और रिमझिम लगा कर सुन रहे हैं कौशलपुरी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुन रहे हैं। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में। और आगे यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए आप कौन है कहाँ से। एक और यहाँ मैसेज है, और संदेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल बने रही है हमारे साथ में। और यहाँ आगे एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि कहाँ गए ले लड़कैया, यानी कि फरमाइश के साथ है। अमरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, फिलहाल अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास पहुंचा हुआ है। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं पप्पू ठाकुर जी बगही बाजार से जुड़े हुए हैं कटिया गोपालगंज से। तो चलिए अपने गाने की फरमाइश को इंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे और गाने की फरमाइश करने वाले थे पप्पू ठाकुर जी बगही बाजार कटिया गोपालगंज से। और इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना चलाने के लिए। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम अजय है, अयोध्या जिला से बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से, और मुझे गाना सुनना है बलम प्रदेश से, और मैं कौशलपुरी में टेलर की दुकान है मेरा, और पूरा दिन रेडियो रिमझिम सुनते रहता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैम, एक महीने से सुनना शुरू किया हूँ और मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, और ऐसे ही साथ देते रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को और आपकी फरमाइश है। तो बिल्कुल थोड़ा वेट करिए, आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ और सुन रहा हूँ रेडियो रिमझिम को। और संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं कोलकाता से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ अहमद अली जी जुड़ चुके हैं फिर से, लिख रहे हैं कि हम भी आ गए हैं, मेला चलना है मैम, तो मेला तो जाना नहीं है लेकिन मैं इधर से जब घर जाऊँगी तो रास्ते में ही मेरा घर के बीच में ही मेला पड़ता है और मेला से होकर ही मुझे घर जाना है, तो मुझे स्पेशली मेला के लिए नहीं निकलना है, मैं मेला होते हुए घर चली जाऊँगी। और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे अपने गाने की, और अगली गाना जो मेरे पास पहुंचा हुआ है वो है बाल कुमार सहनी जुड़े हुए और इनको सुनना है गाना निरहुआ रिक्शा वाला से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, ना जाने का हो गई बाटे आज।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और 2:06 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज है, नंद कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश और गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना बजा दीजिए मैम। तो गाना हम आपका सुबह ही बजाएं, अब दूसरा गाना तो नहीं प्ले कर सकते। और मैसेज करने वाले हैं मोतिहारी जिला से मिस्टर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि चादर देख कर लगा था कभी बिछड़ेंगे नहीं, चाहत देख कर लगा था कभी बिछड़ेंगे नहीं, नज़र ऐसी लगी कि देखना भी नसीब नहीं हुआ। नमस्कार सोनी जी, राधे राधे। सुजीत कुमार जुड़े हुए हैं प्रेमनगर बसरा राजा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश है, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है, गाने के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और फरमाइश है तो आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे, फिलहाल सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और यहाँ सगीर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं तेजपुर असम से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि हमारी तरफ से सभी श्रोताओं को जुम्मा योमे अशुरा की शुभकामनाएं दे दीजिएगा। बिल्कुल दे दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गांव में तीजिया आइल बा, और गाने की फरमाइश के साथ है, नाम मेंशन नहीं है तो बिल्कुल अपना नाम पता बताइए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि दिल में राज छुपा है दिखाऊं कैसे, दिल में राज छुपा है दिखाऊं कैसे, हो गया है प्यार आपसे दिखाऊं कैसे, दुनिया कहती है मस्त लिखो, दुनिया कहती है मत लिखो नाम दिल पर, जो नाम है दिल में उसे मिटाऊं कैसे। और मैसेज के साथ है नाम इनका पाजी यूपी चौवन से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और अभी हम भी ट्यून किए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है गाने की फरमाइश, दिल का दिया जला के गया है कौन। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश प्ले कर रहे हैं, नंद कुमार जी हैं मध्य प्रदेश से, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश मध्य प्रदेश से पहुंची हुई थी, नंद कुमार शर्मा थे और कुछ लिख रहे हैं। और भी यहाँ एक मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि और यहाँ नंद कुमार जी की तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं थैंक यू मेरा सॉन्ग बजाने के लिए। और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, ए बलमा परदेसी सुनवाएंगे लेकिन दोपहर समाचार के बाद। और लिखते हैं कि प्यार का पहला इसका दूसरा, मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है, इसलिए हम आपको चाहते हैं क्योंकि चाहत का अक्षर पूरा होता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और मैसेज करने वाले हैं अजय जी, अयोध्या जिला से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और आपकी गाने की फरमाइश है जो दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। 2:14 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, तो कहीं मत जाइए, आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम का। और जिनकी भी गाने की फरमाइश जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आप सभी एक बार फिर से मैसेज करिए कि हमारी गाने की फरमाइश जो है बाकी है और दोपहर समाचार के बाद आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश जो है पूरा करेंगे।
1: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान, कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से, टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
6: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
5: गृह मंत्री ने कहा कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों

0: से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
4: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
9: और 90-97-61-60-02।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
15: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
16: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
17: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
18: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
17: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
19: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
20: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
19: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
20: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
21: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
22: रेडियो रिमझिम।
21: सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894 18744।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जात, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
11: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।
12: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
13: क्यों, क्या हुआ है?
12: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
13: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
12: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
11: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रुनसिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। कॉल के माध्यम से जुड़ने के लिए नंबर है 7277-1665-96 पर कॉल करिए, और कॉल सिर्फ वही करें जिनके पास व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं है, जो व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं यूज करते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर दोस्त हमेशा करीब रहेंगे, कभी मुस्कान तो कभी आंखों में पानी बनकर। और मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि किताब लंबी हो गई है तेरे इंतजार की राह, अब तो आंखें भी थक गई है तुझे देखते देखते। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका, सुजीत कुमार जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। अनिल जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि न्यूज के बाद हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आज की अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है गाने की फरमाइश है, ए बलमा परदेसी ये मनवा के राजा। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं अजय जी, अयोध्या से जुड़े हुए हैं और सुनना है गाना इनको, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय।

पर रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे अजय जी, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए, और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना। और यहाँ उससे पहले मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपसे वीडियो कॉल पर बात हो रिकॉर्डिंग के बजाय। अभी तक तो ऐसा रूल नहीं बना है और आगे का मुझे पता नहीं, और जिस दिन बनेगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौहान से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ सोनू जी जुड़ चुके हैं गौसिया से गाने की फरमाइश है, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रंजीम 90.4 FM पर।

0: मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
5: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
7: 90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और हम बात कर रहे हैं छह सही लाभ कई के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। और यहाँ HPV टीके से जुड़ी अगली सवाल है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? जरूरी नहीं कि मोबाइल या सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी सही ही हो, कई बार अधूरी या गलत जानकारी भी तेजी से फैल जाती है, जिससे लोगों के मन में भ्रम और डर पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्य विभाग जैसे विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो दोस्तों, सुनी सुनाई बातों या अफवाहों की बजाय सही और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करिए।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ 3:02 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और एक घंटा हम सभी के पास समय है और फरमाइशों का सिलसिला अभी भी जारी है और फरमाइश जो काफ़ी सारे बचे हुए हैं और देखते हैं कितनी फरमाइशें अभी पूरा कर पाएंगे। और यहाँ मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत आपका, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। और आगे यहाँ मैसेज है, सोनू जी हैं गौसिया से, लिख रहे हैं कि आज पहली बार मेरा पूरा गाना बजा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे गाने की फरमाइश की जिससे मैं पूरा बजा पाई। और आगे यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है, गाने की फरमाइश है, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं सुजीत कुमार जी, लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

और यहाँ बसंती देवी जी जुड़ चुकी हैं लामेचौर चबरिया टोला से, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग सुनी दी, याद तेरी आती है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ विक्रमगंज रोहतास से नौशाद मोबाइल जी जुड़ चुके हैं गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सभी लोगों को जुम्मा मुबारक और आपको भी। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मुस्तफ़ा जी हैं, और बिल्कुल बोल दिया सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। और यहाँ पास जी यूपी चौहान से लिख रहे हैं कि मैम वॉइस भेजो, तो बिल्कुल नहीं भेजी अभी, कल ही आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले किए हैं, एक सप्ताह बाद ही अगली वॉइस और अगली फरमाइश आप भेजिएगा।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची थी सुजीत कुमार जी की लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना देरी किए आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है अयोध्या जिला से जयप्रकाश जी का, और इनको सुनना है गाना मेघा रे मेघा मत परदेश जा। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है वो भी प्ले कर दिए, इंजॉय करें अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: कब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
0: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस, और हम बात कर रहे हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत।

0: कोविड टीका से जुड़ी कुछ सवाल अफवाह के बारे में। तो यहाँ अगला सवाल है हमारे पास कि HPV टीका कब और कहाँ लगेगा। HPV टीकाकरण की व्यवस्था राज्य और जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। यह टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और कई स्थानों पर स्कूलों के माध्यम से भी लगाया जाता है। टीकाकरण की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, ANM या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। वो आपको सही समय और स्थान की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में पात्र बच्चियां हैं तो समय पर जानकारी लेकर टीकाकरण का लाभ जरूर उठाइए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान दिए हैं। राम कुमार जी है बालाघाट से, बालाघाट मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गाने की फरमाइश है। तो हम आपको बता दें कि कल ही आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले किए हैं और अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है। जैसे ही एक सप्ताह होगा दूसरी गाने की फरमाइश जो है आपका प्ले करेंगे। और यहाँ अली अख्तर जी जुड़े हुए हैं कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि मुहर्रम का मुबारकबाद और नाइस सॉन्ग। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि याद तेरी आती है सुपर सॉन्ग मैम, और हमारे बचपन की पसंदीदा सॉन्ग हुआ करता था, फिर रेडियो पर सुन लिए और याद तेरी आती है। थैंक यू गाना बजाने के लिए और फरमाइश करने वाले भाई को और सुनने वाले सभी को धन्यवाद देता है। और सोनू जी हैं गौसिया से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है हमारे पास और लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं कि पानी की तड़प प्यासे से पूछो, कितनी तड़प होती है उस इंसान से पूछो, कि दिल से जुदा होने का एहसास किया क्या होता है। नाइस सॉन्ग मेघा रे मेघा। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका। नाम भी मेंशन किया करिए आप लोग की कौन है कहाँ से, और नाम इनका मेंशन है ही नहीं इसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े और स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ एक और मैसेज है झांझरिया सॉन्ग के साथ फरमाइश पहुँचा हुआ है, सुनील जी हैं और बोल रहे हैं प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जम्मू से जुड़े हुए हैं। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, तो चलिए वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है मैम, बहुत ठंडा मौसम है, इतना बारिश हो रही है कि हम लोग खुद परेशान है और रोड के काम करते हैं, फुल लेंथ बनता है और 3 दिन से बारिश हो रही है, काम हम बंद है, इसीलिए रेडियो रूम जिनको मैं भी सुन रहा हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे गाने को जरूर से बजा दीजिएगा, इस गाने को कल से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो आपके गाने की फरमाइश जो है खेसारी लाल की आवाज़ में, दिल है कि चार्जर कतई लगा ले लूँ, प्ले कर दिए। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: सुन रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे विदा निवास जी की फरमाइश थी मऊ जिला से। और यहाँ पाजी यूपी चौहान से हैं, लिख रहे हैं कि वाह क्या सॉन्ग है मैम। और लिख रहे हैं कि आगे यहाँ एक और मैसेज है कि लिख रहे हैं मैं भी अभी अभी अपने खेसारी का गाना बजाया, मुझे बहुत ही पसंद आया। और उसमें ज़्यादा जो आप बीच में गुनगुना रही थी वो मुझे बहुत पसंद आया। और मैसेज के साथ है नाम है इनका अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और यहाँ मैसेज है और नंद कुमार शर्मा जी है मध्य प्रदेश से, लिख रहे हैं कि मैं नया श्रोता हूँ और आपका नाम जानना चाहता हूँ, बताइए कि आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम सोनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप शो से जुड़े। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले कर रहे हैं। और झाझरिया सॉन्ग सुनना है, हिंदी सुनील साथी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके गाने की फरमाइश। चलिए प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM, अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस, और हम बात कर रहे हैं सेहत सही लाभ के अंतर्गत HPV टीका के बारे में। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की HPV टीका से जुड़े कई सवालों और उनके आसान जवाब। हमें उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से HPV टीके के बारे में आपकी शंकाएं कुछ हद तक दूर हुई होगी और आपको सही जानकारी मिली होगी। याद रखिए, सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए किसी भी तरह के भ्रम या अफवाहों से बचें और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारियों पर ही भरोसा करें। फिलहाल आज की जानकारी यहीं तक। सेहत से ही लाभ कई अभियान के अंतर्गत हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी यहाँ इंस्टाग्राम मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और लोक कुमार गुप्ता जुड़े हुए हैं गाने की फरमाइश के साथ। तो लोक जी, आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा देर वेट करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम गाने के साथ में आप हल्का हल्का गुनगुनाते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अजय जी, अयोध्या से। जी हाँ बिल्कुल, आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि टीचर मैं दो वाक्य दूंगा, उसमें आपको अंतर बताना है। पहला वाक्य है उसे बर्तन धोए, और दूसरा वाक्य है उसने बर्तन धोए, पहला वाक्य है। और दूसरा है कि उसे बर्तन धोने पड़ेंगे। पप्पू, पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता अविवाहित है। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, बोल रहे हैं कि काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ और गाने की फरमाइश है। और फरमाइश पहुँचा हुआ है नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से। तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करें अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी नौशाद मोबाइल बिक्रम ने रोहतास से गाने की फरमाइश थी और लिख रहे हैं कि डीजे पर बज रहा है मैम, सभी लोग हम लोग सुन रहे हैं और गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ पढ़ेंगे और अगली फरमाइश जो है हमारे पास वो पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम मैडम।
0: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दी।
1: मुहर्रम का बहुत बहुत आपको मुबारकबाद।
0: जी जी आपको भी।
1: तो मैं तो बोल रहे हैं अलाउद्दीन
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अलाउद्दीन जी?
1: गोपालगंज से ही बात कर रहे हैं, मैं रहने वाला हूँ पूर्णिया का। मैं अभी गोपालगंज में रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो खाना पीना हो गया मैडम?
0: जी जी खाना पीना हो गया, बताइए आपका हाल चाल कैसा है? किधर गोपालगंज में तो बहुत जगह से तजिया उठता होगा, आप किधर से हैं?
1: गोपालगंज में आइए।
0: तो गोपालगंज में ही तो है ना हम अभी?
1: गोपालगंज में ही आइएगा घूमने के लिए, देखने के लिए।
0: अच्छा अच्छा, जो हमारा रेडियो रिमझिम है वो तो मेन टाउन में ही है गोपालगंज। तो
1: मैडम हमारे हसन हुसैन के नाम पे लिखा है, मुझ पे क्यों बंद कर तो पानी, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ?
0: मुझ पे क्यों बंद किया पानी
1: जी, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ?
0: अरे चलिए, तो गाना प्ले कर दिया आपका
1: जी मैडम।
0: जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
1: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 3:50 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 10 मिनट है हम सभी के पास और यहाँ फरमाइशें जो है काफ़ी सारी है और कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सनी मैडम जी, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बुद्धि जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ विष्णु कुमार जी जुड़ चुके हैं वीके फास्ट फूड सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत। लिख रहे हैं हम भी जुड़ चुके हैं। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ओके मैम चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार सोनी मैम, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। बिल्कुल, और मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका और बाय बाय। और आगे यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि दिल से दिल की दूरियां नहीं होती, दिल से दिल की दूरियां नहीं होती, काश हमारे बीच कोई मजबूरियां नहीं होती। आपसे मिलने की तमन्ना है हमें, लेकिन कहते हैं ना कि तमन्ना पूरी नहीं होती। और इस मैसेज के साथ है पाजी यूपी चौहान से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है विमल जी जुड़ी हुई हैं थावे से, और इनको सुनना है गाना घर ही में मंदिर बनाई थी। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ अजय राज जी जुड़े हुए हैं झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपके तरफ से जो गाने की फरमाइश है उसे हम प्ले नहीं कर सकते, माफ करिएगा। अगर गाना सुनना है तो अच्छे गाने की फरमाइश भेजिए।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, विमल जी का फरमाइश था वैसे। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है गाने की वो है लॉलीपॉप लागलू पवन सिंह की आवाज़ में। और गाने की फरमाइश जो है पहुंचा हुआ है वो झारखंड से। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और फरमाइश करने वाले हैं अजय राज जी, तो इन्जॉय करिए अपने गाने को।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी और अजय राज जी की फरमाइश है झारखंड से और 3:59 हो चुके हैं 59 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अब दीजिए आप सभी मुझे जाने की इजाज़त। और यहाँ फरमाइश की बात करें तो अभी भी काफ़ी सारे फरमाइश है और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम गाना छोड़ दी मेरा नहीं बचा, कोई नहीं आज तो समय नहीं है। और यहाँ और भी काफ़ी सारे मैसेज है फरमाइश है और जिनकी भी गाने की फरमाइश आज नहीं प्ले कर पाए हैं बोलो माफ़ करिए। और आप सभी के लिए आखिरी गाना छोड़ के जा रहे हैं, इंजॉय करिए आप इस गाने को और कल फिर से जुड़िएगा इसी शो में इसी समय पर और पूरी कोशिश रहेगी कि हम कल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। और फिलहाल इस गाने के साथ दीजिए मुझे जाने की इजाज़त, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और रखिए अपना ख्याल अपनों का ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042-34-03, 62042-34-03।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का

0: लालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070 32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
9: संपर्क करें 99393-65923।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: फोनवे पर दे दो।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही

0: कहूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
5: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97,714,86,164।
6: हेलो, मैं काजल राघवानी, पटना से पाकिस्तान के फुल वीडियोस आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स चैनल पर।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62-042-34-03, 62-042-34-03।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 99393-65923।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
5: Pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: क्या हाल है?
1: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
2: हम भी आते हैं, और सब बताइए।
1: और सब तो बढ़िया है। आप बताइए, क्या हो गया है?
2: हाँ, खाना बना खा लिए।
1: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आज?
2: गाना नहीं है, मेरी गाड़ी मेरी बंगला सब कुछ तेरा सरकार, मेरा भी कुछ भी नहीं।
1: ओके, सॉन्ग कितनी डेडिकेट भी है।
2: और सब
1: बढ़िया है ना?
2: हाँ, सब ठीक है।
1: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले कर रहे हैं और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: तो परमात्मा
1: जी,
0: यार वो ऐसे ही लगाते हैं फोन, और हमारे साथी वो भी लगा रहे थे, उनका भी नहीं लगा
1: जी। कॉल तो आ ही रहे हैं।
0: हिंदी गाना सुनाइएगा, हिंदी कोई भी सुना दीजिएगा, बढ़िया अपना पसंद का।
1: हम अपने पसंद का आप नहीं बताइएगा?
0: नहीं, आप
1: कोई भी हिंदी सॉन्ग।
0: हाँ जी, हिंदी कोई भी
1: जी। जी सॉन्ग किसी को सुनाएंगे भी?
0: सारे जो जितना रेडियो में सुनते हैं सभी के लिए। आपको और इधर हमारे बिजली महतो भी है, संतोष कुमार गोपाल वैसे कुछ आए कुछ ही है। ठीक है जी,
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है जी।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
3: कुचायकोट ब्रांच में 9693101।

0: बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
9: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: नमस्ते मैम।
11: नमस्ते
12: मैम, हमको गाना सुनना है।
11: नाम बता दीजिए अपना।
12: एक सारण पार्टी डिप्लोमा से बुक रहा है, बहुत बार फोन लगाने पर लगा है।
11: कोई नहीं, कॉल तो आ रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। और बताइए कैसे हैं आप?
12: मैं ठीक हूँ, आप बताइए अपना।
11: हम भी अच्छे हैं। कौन सा सॉन्ग बता दीजिए?
12: क्या मैं मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ,
11: यही सॉन्ग? और सॉन्ग किसी को डेडिकेट दिया है?
12: मैम आपको और रेडियो रिंगटोन परिवार।
11: ओके,
12: आज नहीं बजेगा?
11: आज ये वाला नहीं बजेगा, कल बजेगा।
12: ओके मैम,
11: चलिए फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं सुवीर कौर बोल रहा हूँ, जिला देवघर झारखंड से मैं।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा है मैम?
0: इधर अभी गर्मी है, आपकी तरफ?
1: हमारे तरफ कल बारिश हुई थी, मौसम कुछ सुहाना हुआ है।
0: बढ़िया। और बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हाँ जी, सुना दीजिए मैम, पुरानी नस्सी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम, गीत के बोले जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी, सबसे पहले मैम आपको और जितने भी रेडियो के लिसनर हैं सबको को सुनाना चाहता हूँ। कोई फ्रेंड्स हैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। विष्णु प्रसाद यादव हैं, मदन कोल हैं, कृष्ण कोल हैं, कमली कोल हैं, राजकुमारी हैं, जुगल कोल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्कार मैडम।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 9.4 एफएम।
13: जी, हमको गाना सुनना है मैडम।
14: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
13: तो गाना सुनना है रंग भरे मौसम के रंगीली रात के, और उसके बाद क्या है तेरी मांग में सिंधु से जाकर एक गाना ये मैडम। आरती जी बोल रही है। तो कैसा है मन में जाएगा तो लगता है 42 डिग्री हो जाएगा ना
14: टेम्परेचर। लग तो रहा है, गर्मी तो बढ़ रहा है,
13: हालत खराब है।
14: अभी तो 11:30 हो रहा है देखिए, और 12:00 बजे तक कितना बढ़ता है।
13: अरे बाबा, तो हमको भी बाजार में डर लग रहा है। गर्मी की क्या बताए, लाइट चला जाता है तो और हालत खराब।
14: ये तो है, लाइट नहीं रहती तो बहुत
13: हवा
14: तो अच्छा लगता है।
13: पुराना वाला दिन आएगा और सब ठीक है।
14: हाँ हाँ, मेरा ठीक है, आप ठीक है ना।
13: ऊपर वाले के रहम करम से अच्छे हैं, और साथ भी ऊपर वाला रहम करम से आपको भी अच्छा रखे।
14: जी जी,
13: ठीक है, गाना सुना दीजिएगा ये वाला।
14: ओके ओके, चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है बहन जी, और आपके रंजन सुन रहे हैं।
0: जी
1: जी
0: बता दीजिए, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: जी पिक्चर का नाम है अंडा कानून।
0: और सॉन्ग?
1: और सॉन्ग भी यही है, ये अंडा कानून टाइटल सॉन्ग है ये।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
1: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको डेडिकेट है, हमारे मांगीलाल जी है चंदेल, मांगीलाल जी धाकड़ है, गोपाल ओझा है ककवासा से, गजराज सिंह लोधी है रेलाई से, ये सभी के लिए गाना डेडिकेट है। जी
0: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: Now pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Break के
13: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, गुड मॉर्निंग।
14: गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: जी भारती जी।
14: हाँ जी
15: जी, साथ मास्टर धना से।
14: कैसे हैं?
15: है ना
14: जी जी, आपका फर्स्ट ही कॉल है
15: जी। और जो है यार, मौसम चलेगा कि नहीं? कल नहीं चला था।
14: नहीं
15: तो मौसम कैसा है? आप
14: मौसम ठीक ही है।
15: आज बोल रहे हैं, आज सुबह जब मैं जागा तो तेरी कसम ऐसा लगा तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है। आग और 16 मूवी का
14: जी।
15: और सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और जितने रेडियो रेंजी में सभी लोग सुनेंगे और हम लोग धनाव से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे।
14: जी चलिए, और सब बढ़िया?
15: खूब बढ़िया
14: जी जी, बढ़िया होना चाहिए। चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजी 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगून 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसे हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: चल रहा है, एक दिन से
0: चल रहा है।
1: और क्या, एक एक दिन चल रहा है,
0: फट तो रहा है एक एक दिन।
1: और थोड़ा अपना सुनाइए।
0: हमारा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मैं बता नहीं दिया हूँ, 11 बजे से कॉल करते करते ये 12 बज गया।
0: अच्छा जी, टाइम हो ही है, 12 बज गया है।
1: तो 12 बज गया, 12:30 बजे तक चलेगा ना आपका?
0: आधा घंटा और।
1: तो मैं वही सोचा कि क्या पता 12 बजे लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
0: शुरुआत में नहीं लगता है तो लास्ट में लग ही जाता है।
1: आपका क्लास तो नहीं मिल पाया, चलिए फिर तो आप आज ही फरमाइश अपने तरफ से कर रहे, क्योंकि सुना नहीं, पता नहीं चला है
0: चलाया।
1: तो
0: अच्छा चलिए,
1: पूरी में सुनाना, अपने क्लास से सुनाना।
0: करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 एफएम।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
1: और 9097-6160-02।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87894-18744।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
14: Hello. जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। नमस्ते।
17: क्या हाल?
16: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए। और बताइए क्या हो रहा है?
17: पहचान रहे हैं मेरे?
16: गणेश नाम है
17: जी। गणेश क्या? आप धीरे धीरे पहचान रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, पहचान
16: जी।
17: और सब बताइए?
16: और सब बढ़िया है, आप ठीक है?
17: बिल्कुल ठीक। आज सब बढ़िया ठीक है, धूप में घूम कर अभी आ रहे हैं। और सब बताइए, खाना वाना खा कर आए की?
16: नहीं, हम खाना खा के आते हैं, आते हैं लोग और लेकर भी आते हैं लोग, जब मन करता है तब फिर खा लेते हैं
17: लोग। सुनना है जी, आज हिंदी सॉन्ग बजाइए।
16: बता दीजिए।
17: चोरी चोरी भोजपुरी में नहीं है?
16: कौन सा?
17: ये बोल रजत पायल का रहेगा, सबसे पहले आपको पूरा रेडियो तब लिखा रहेगा।
16: चलिए ठीक है।
17: धूप उधर हुआ है?
16: धूप तो बहुत हुआ है।
17: चलिए ठीक है,
16: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार सोनू जी।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: सुने तो नहीं बोल रही है
0: नहीं
1: भारती जी। कॉल नहीं लग रहा था, 11 बजे से कुछ भी बता ही नहीं रहा था, नहीं बिजली कुछ भी नहीं बता रहा था, कट जाता था।
0: नहीं, कॉल तो 11 बजे से लगातार आ रहे हैं, अभी तो 12:08 हो गया।
1: तो हम कॉल कर रहे थे तो कुछ भी बोल भी नहीं करता, होता है ना कि बस बताता है, बस भी नहीं बोलता है, कट जाता था फोन।
0: तो नेटवर्क आपके उधर नेटवर्क फुल है ना?
1: हमको नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कॉल किए थे लास्ट में, सोचे थे कि अब लगेगा नहीं लगेगा, टाइम तो पारे हो गया है, फिर प्रयास करता हूँ तो लग गया।
0: चलिए बढ़िया, लग गया तो।
1: आपसे बात ही करना बहुत दिन हो गया था।
0: अच्छा।
1: एक दो बार आपको आई थी इस में, तब एक ही दो बार आपसे बातें हुए और तीसरा बार बात हो रहा है।
0: नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम विमलेश कुमार शर्मा।
0: अच्छा।
1: गोपालगंज जिला पड़ता है और गांव मेरा पड़ता है जिगना गोपाल। जिगना मठ प्रसिद्ध है, हनुमान जी का मंदिर बहुत जबरदस्त
0: है।
1: जिस मठ पे रहता हूँ उस पर 24 घंटे राम नाम चलता है सीताराम।
0: जी जी, अच्छा लगता होगा।
1: उसमें 6 घंटे हम ड्यूटी देते हैं, 3 घंटे नाइट में, 3 घंटे सुबह दिन में। यहीं पर रहते हैं, कभी कभी जाते हैं घर पे, नाइट पूरा नाइट में तो रात में तो यहीं पर रहते हैं।
0: और सब बताइए क्या हो रहा है?
1: बस अब घर से जा रहा हूँ वहाँ से।
0: अच्छा, तो भोजन तो अभी किए नहीं होंगे?
1: नहीं, भोजन तो हो गया, दोबारा होगा 1 बजे।
0: हाँ हाँ, चलिए बढ़िया। तो
1: भोजन तो हो गया था 8 बजे।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना सुनेंगे कहो ना प्यार है के टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा? सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा? बता दीजिए।
1: रहेगा गुड़िया जी है, निर्मला जी है, नेहा जी है, खुशबू जी है, और अनिल जी है, और रामा जी प्रसाद है, और मनोज शर्मा जी है, और मेरा दोस्त है तपे जी, और आप हैं सुनी जी हैं, और जितना रिजन सुनने वाले हैं सबको साथ।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
1: जी। धन्यवाद,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा।

0: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैम, मुझे एक गाना सुनना है।
2: नाम बता दीजिए अपना।
1: ईशा कुमारी।
2: और ईशा जी कहाँ से हैं आप?
1: जी
2: हाँ। कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैं भी अच्छी हूँ। वैसे क्या करती हैं आप?
1: पढ़ाई करते हैं छोटे ना अभी।
2: हाँ, किस क्लास में हैं आप?
1: अभी मैं 3rd क्लास में हूँ।
2: अच्छा जी, पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: आज छुट्टी, मम्मी बोली घर पे रह जाओ इसलिए, धूप पड़ रहा है ना इसलिए।
2: धूप तो बहुत तेज है। चलिए कोई नहीं
1: है।
2: और बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: दिल्ली से मनाली, ये वाला।
2: दिल्ली से मनाली सॉन्ग है? सॉन्ग ही ना है। अच्छा, कुछ लाइन याद है इसका?
1: दिल्ली से मनाली मन आपको, जितने भी रेडियो के दोस्त है उनको और मेरे भाई बहन है इन लोग को।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजर 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 FM।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन मैम बोल रही है? सोनी मैम?
1: नहीं,
0: सोनी मैम बोल रही है?
1: नहीं, सोनी मैम नहीं बोल रही हूँ।
0: भारती मैम कैसे हैं?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम तो ऐसे वार्ड नंबर 1 है।
1: आपकी है नाना सा पानी?
0: हाँ, हम लोग तो किए हैं।
1: चलिए बढ़िया।
0: दोनों लोग का आवाज एक ही जैसा हो रहा है रेडियो इंजिन में। सोनी मैम का आवाज के तरह आपका भी आवाज लग रहा है।
1: ऐसा है?
0: सोनी मैम नहीं ना बोल रही है?
1: नहीं नहीं,
0: आज गाना सुनना है जान मूवी से।
1: हम
0: ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे।
1: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ, सबसे पहले तो आप और मेरी वाइफ आया करी जी, उनको, कमरान भाई को, राघव भाई को, दिलीप भाई को, और गिर इंजिन जहाँ से भी सुन रहे हैं रेडियो इंजिन सभी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
0: थैंक यू मैम।
1: रेडियो 90.4 FM। वालेकुम अस्सलाम।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 894 18 744।
11: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
12: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 99393 65923।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
17: Hello, hello, hello, hello, hello.
18: Break
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो।
18: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
18: पार्थी जी। कृष्णा जी, एक राजा गाना प्रवाइज करें।
17: कीजिए, बिल्कुल।
18: फिल्म का नाम है दोस्ती।
17: और सॉन्ग कौन सा?
18: सॉन्ग सुना दीजिएगा। चाहे मनवा दुख चिंता क्यों सताती है, तो अपना साथी है। सुजाती है आदमी है जाती है रू तो अपना। और जाना डेडिकेट रहेगा मावे रामा भाई को, ओम साइन टेलर राघव जी भाई को और मनान भाई और खासर आप लिए रोनी मैडम। चलिए ठीक है, बजाइएगा तो धन्यवाद।
17: जी जी बिल्कुल बजाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बजाएंगे, आपका छोड़ देंगे।
18: माता जी कहती का और लंबी उम्र है,
17: आपकी दुआ है।
18: दुआ है, दुआ रहे जब जीवित रहेंगे तो। बच्चों लोगों को हम यही आशीर्वाद देंगे।
17: जी जी बिल्कुल।
18: चलिए ठीक, गर्मी तो जान ले रहा।
17: हाँ, गर्मी तो इतना है कि
18: धन्यवाद।
17: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू जी। मुझे गाना सुनना है।
1: नाम बता दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम है कविता।
1: कहाँ से हैं कविता जी?
0: मैं गोपालगंज में ही रहती हूँ।
1: अच्छा जी, गोपालगंज में किधर रहती हैं?
0: गोपालगंज में बीएम फील्ड के पास।
1: ओ बढ़िया है फिर। और सब?
0: और आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: क्या हो रहा है अब?
0: अभी कुछ नहीं हो रहा है, खाना पीना खा के अपना बैठे हैं।
1: चलिए बढ़िया, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: मुझे अनोखा बंधन में का जो गाना है, तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता लारा क्यों है माँ, ये वाला गाना मुझे सुना है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी माँ एक साल पहले इस दुनिया से चली गई है।
1: ओ, कुछ हुआ था क्या?
0: हाँ, उनका तबीयत ठीक नहीं था।
1: चलिए कोई नहीं,
0: ठीक है, सुना दीजिए।
1: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 7075763100 या 7075742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225667 या 97714861164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
13: हार्ट क्लिनिक।
14: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
13: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
14: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
4: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी।
5: और कैसे हैं आप?
4: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए। जी जी जी मैम, आऊँ मैम। वहाँ का मौसम क्या क्या हाल चाल है?
5: मौसम तो अभी गर्मी है, आपके उधर मौसम कैसा है?
4: इसलिए हमारे यहाँ तो अभी मैम गर्मी आई है, धूप है मैम, बारिश तो अभी नहीं है मैम, तो बारिश का इंतजार है।
5: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
4: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा गाने के बोले मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का रोहित कुमार। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ।
5: ओके तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: घटा
1: घटा सावन की घटा
0: घटा सावन की घटा।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 एफएम में। नमस्कार
3: जी, भारती मैम बात कर रहे हैं ना? कहिए हाल चाल मैम, क्या हाल है
2: जी?
3: सब ठीक है ना?
2: हाँ हाँ सब ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: जी
2: आप कैसे हैं? आप ठीक है ना?
3: जी जी आप लोगों को आशीर्वाद से हम भी ठीक।
2: बड़ी टाइम पे फोन लगाए हैं।
3: हाँ बंद होने वाला था। देख रहे थे कि आज कर लेते हैं।
2: अच्छा जी,
3: और वहाँ का मौसम कैसा है मैम?
2: इधर का तो मौसम अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है।
3: यहाँ से इधर से तो बहुत गर्मी है। कल तो पत्थर बरस गया हमारे इधर।
2: आपके इधर?
3: हाँ दो पत्थर हमारे मुड़ी पर भी गिरे।
2: अच्छा जी, बाहर थे क्या आप?
3: नहीं नहीं घर में।
2: घर में थे?
3: अच्छा, छत के तो नहीं मगर करकट के जरूर छेद कर दिया है।
2: ज्यादा पत्थर गिरा है क्या?
3: हाँ लगभग मानिए ना कि आधा किलो गिरा।
2: तो मौसम उधर का तो अभी ठंडा होगा?
3: मौसम ठंडा नहीं है मैडम।
2: हाँ
3: मौसम तो इतना बिजोर है गर्मी के, जो अगर मान लीजिए कि 2 मिनट अगर धूपा में कोई अगर खड़ा हो जाए ना तो पहले ही मर जाए। सब बात छोड़िए, गाना सुनवा दीजिए।
2: अच्छा जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे?
3: गर्मी वाला गाना सुनवा दीजिए।
2: गाने का कुछ लाइन बता दीजिए।
3: आना तो ये भी गाना सुनवा दीजिए, ये साल दूसरा था ये वो साल दूसरा है।
2: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट दिया है?
3: थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा।
2: अच्छा चलिए, गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: एपिसोड 31, 3-1।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किस

0: ऑफिशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765 65750।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश

0: acid.
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स

0: राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आज पटना लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नव सृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की केंद्रीकृत नियुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शोध एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्यार्थियों की लंबित डिग्रियों के वितरण कार्य को 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों के साथ मिली भगत और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित उपाधीक्षक पर जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप है। जेल अधीक्षक की जांच में यह भी सामने आया है कि उपाधीक्षक की ओर से बंदियों के परिजनों से पैसे लेकर उनकी ओर से लाई गई सामग्री को बिना सुरक्षा जांच के जेल परिसर में पहुंचाया जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितता के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे सरकार उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।
1: सबके आस्था का जगह है।

0: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। श्री झा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया, कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा करके मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं, और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर वन है।
0: राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 90 अंचलाधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह स्थानांतरण विभागीय वार्षिक तबादला नीति के तहत किया गया है। इससे पहले विभाग ने 60 अंचलाधिकारियों का तबादला किया था। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राजस्व एवं भूमि प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विभागीय स्तर पर जून माह में वार्षिक तबादलों की व्यवस्था लागू की गई थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, इससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा।
2: शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करा करके और उनके स्थानांतरण नीति को सरल कर दिया है, और स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वो अपना आवेदन जब पोर्टल पर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में, ये स्थानांतरण करने की हमने योजना बनाई।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसे देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद श्री यादव ने कहा कि एनडीए सरकार न्याय के साथ विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी कथित मुठभेड़ मामले में सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। श्री कुमार ने नालंदा जिले के नूरसराय में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और खेती अधिक लाभदायक बनेगी। उन्होंने किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में योम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सुनवर्सा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में आज पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 17 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बना लिए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम T20 मैच रविवार को खेला जाएगा। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने मॉडल सदर अस्पताल में बन रहे ICU का निरीक्षण किया। 4 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ICU को 30 जून तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नव नियुक्त PDS डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के 7,000 से अधिक कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को निःशुल्क लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के परसोना गांव में आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात से कई घरों में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ की और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अभय। आज हम बात करेंगे उस पहले पोषण की जो हर नवजात को उसकी माँ से मिलती है, माँ का दूध। जैसा कहा जाता है, माँ का पहला दूध बच्चे का पहला टीका। इसका

0: कहा, सबसे पहले माँ का दूध दो, वही बच्चे की पहली वैक्सीन है। वो पीला गाढ़ा दूध जो शुरुआत में आता है कोलोस्ट्रोम, वही सबसे ताकतवर होता है।
1: बिल्कुल सही, कोलोस्ट्रोम में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को सर्दी, खांसी, दस्त, निमोनिया जैसे रोगों से बचाते हैं। ये दूध न सिर्फ शरीर को मजबूत करता है बल्कि दिमाग को भी तेज बनाता है। जैसा एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर बचपन में अच्छा पोषण मिले तो बच्चा न सिर्फ स्वस्थ होता है बल्कि अच्छा सोचता और समझता भी है।
0: सही कहा, अब यही देख लीजिए, मेरा स्वास्थ्य सिंह अब हर बार स्कूल में फर्स्ट आता है और खेल में भी आगे है। एक बात और, नन्ही मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है, बिल्कुल वैसे ही माँ के दूध में होता है छोटा सा घूंट लेकिन ताकत भरपूर। जो माँ अपने बच्चे को सही समय पर स्तनपान कराती है वो बच्चे के अंदर बल, बुद्धि और चमक तीनों भर देती है।
1: क्या खूब कहा भाभी आपने। सुनने वालों के लिए हम बता दें कि स्तनपान से न सिर्फ बच्चा तंदुरुस्त होता है बल्कि माँ के लिए भी फायदेमंद होता है। जैसे इससे माँ की वजन जल्दी कम होता है, बच्चे रानी यानी गर्भाशय जल्दी सामान्य हो जाती है और सबसे खास स्तन और गर्भाशय में कैंसर का खतरा कम होता है। माँ और बच्चों का भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत होता है।
0: बिल्कुल सही, और जो माँ बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराती है उसे अगला गर्भ भी देर से ठहरता है, यानी ये एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक की तरह काम भी करता है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, खेल कूद से तन बने, पढ़ाई से मन, और तन की नींव माँ का दूध ही है।
1: बिल्कुल, और शोध बताते हैं कि जो बच्चे 2 साल तक माँ का दूध पीते हैं उनका दिमाग तेज, शरीर मजबूत और व्यवहार अच्छा होता है। जैसा एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मतलब पालन पोषण में जो देंगे वही लौट कर मिलेगा। अगर बच्चा सही पोषण से पलता है तो वो जिंदगी में भी सही रास्ते पर चलेगा।
0: और देखिए, जब माँ को सहयोग नहीं मिलता तो वो थक जाती है, परेशान हो जाती है, दूध कम बनने लगता है। माँ को जरूरत होती है आराम, अच्छे खाने और अपनों के सहारे की, वरना माँ अकेली सब कुछ नहीं कर सकती।
1: एकदम सही, हमारे समाज को चाहिए कि हर माँ को दूध पिलाने में मदद मिले, घर पर, काम की जगह पर और अस्पताल में भी। ये हफ्ता हमें याद दिलाना है, हर बच्चा माँ का दूध पाने का हकदार है और हर माँ का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
0: बहुत सी माओं को लगता है कि अगर दूध कम आ रहा है तो वो माँ होने में फेल हो गई, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी तनाव, बीमारी या थकावट से दूध कम बनता है, पर समय पर सलाह, पौष्टिक खाना और मन का चयन हो तो दूध फिर से आने लगता है।
1: एक और जरूरी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। कभी कभी बच्चे भी हमारे इशारे से हमें बताते हैं कि वो खुश नहीं है, भूखे हैं या पेट खराब। हमें उनकी बातों को समझना चाहिए, प्यार से उनका साथ देना है।
0: और माँ का दूध सिर्फ पोषण नहीं, ये प्यार, सुरक्षा और अपनापन है। जब बच्चा माँ की गोद में दूध पीता है तो वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है।
1: बिल्कुल भाभी, और हम सब जानते हैं नैनीहाल देश का भविष्य है। अगर हमने बच्चों को बचपन में प्यार, सेहत और पोषण दिया तो वो बड़ा होकर अच्छा समाज और देश बनाएंगे।
0: एक कहावत और सुनिए, गुड़ खाए गुड़गुड़ाए फिर बोले मीठा मीठा। मतलब सिर्फ खाने से नहीं, बचपन में मीठे बोल, प्यार और सही परवरिश भी जरूरी है।
1: आज की बात से हमें ये समझ आया कि माँ का दूध बच्चों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टीका है और स्तनपान सिर्फ माँ का नहीं पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को समझने के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह अभियान चलाया जाता है।
0: हाँ, माँ के दूध से बढ़े बल, बुद्धि और चमक, ये सिर्फ कहावत नहीं हकीकत है। और इस साल स्तनपान सप्ताह की थीम है, स्तनपान को करें प्रोत्साहित, कामकाजी माताओं को दे सहारा।
1: भाभी, इस थीम को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आया है कि आजकल बदलते जीवन शैली में कामकाजी महिलाएं शिशु को अपना दूध नहीं पिला पाती, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपका। आजकल की बदलती जीवन शैली में जब महिलाएं ऑफिस या बाहर का काम करती हैं तो उनके लिए शिशु को अपना दूध, माँ का दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ आसान उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जैसे दूध निकालकर स्टोर करना, माँ अपना दूध ब्रेस्ट मिल्क साफ सुथरे तरीके से निकालकर एक साफ बोतल, कटोरी, ग्लास में स्टोर कर सकती हैं। इसे फ्रिज में 6 से 8 घंटे तक रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बच्चे को पिलाया जा सकता है। परिवार की मदद, जब माँ ऑफिस में हो तब घर में दादी, नानी या कोई भरोसेमंद सदस्य बच्चे को स्टोर किया गया दूध चम्मच या बोतल से पिला सकते हैं। काम पर मातृत्व सुविधाएं, कुछ ऑफिसों में माताओं के लिए फीडिंग रूम होते हैं, वहाँ माँ थोड़ी देर में जाकर दूध निकाल सकती हैं। बच्चे के लिए समय निकालना, अगर संभव हो तो माँ काम के बाद बच्चे को सीधा स्तनपान कराए ताकि उसका माँ से जुड़ाव बना रहे और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे।

0: इन तरीकों से कामकाजी महिलाएं भी अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाने की जिम्मेदारी निभा सकती हैं।
1: अरे वाह भाभी, आपने तो कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक सही और आसान तरीका बता दिया।
0: और एक खास बात, जो माँ HIV पॉजिटिव है उन्हें भी अगर डॉक्टर सलाह दें तो सावधानी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है।
1: टीकन भाभी, अब हमें ये भी बता दीजिए कि ऊपरी दूध शिशु को पिलाने के लिए नुकसान क्या है।
0: हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब माँ का दूध नहीं दिया जाता और शिशु को ऊपरी दूध जैसे गाय का दूध, डिब्बा बंद दूध, फॉर्मूला दूध आदि दिया जाता है तो इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं, जैसे पाचन में कठिनाई। ऊपरी दूध भारी होता है जिससे बच्चे को गैस, कब्ज या दस्त हो सकते हैं, एलर्जी का खतरा। कुछ बच्चों को गाय या फॉर्मूला दूध से एलर्जी हो जाती है, जैसे त्वचा पर लाल दाने, उल्टी या सांस लेने में परेशानी। संक्रमण का खतरा, अगर दूध बनाने के बर्तन या बोतल साफ नहीं हो तो बैक्टीरिया से संक्रमण हो सकता है जिससे बच्चा बीमार पड़ सकता है। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, माँ के दूध में प्राकृतिक इम्यूनिटी देने वाले तत्व होते हैं जो ऊपरी दूध में नहीं मिलते, इससे बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। अत्यधिक वजन या कुपोषण, माँ बच्चे का कम जुड़ाव, जब बच्चा माँ का दूध नहीं पीता तो उनका भावनात्मक जुड़ाव भी थोड़ा कम हो सकता है।
1: टीकन भाभी, क्या कोई सच्ची घटना शेयर करना चाहेंगी जो स्तनपान से जुड़ी हो?
0: जरूर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी पड़ोसन रानी की बेटी हुई, पर रानी को दूध भरपूर मात्रा में नहीं हो रहा था तो रानी की सास ने बोतल का दूध पिलाने को कहा। ये बात रानी ने मुझे बताया तो मैंने रानी की सास को समझाया। मैं रानी के साथ बैठी और उसके बच्चे को दूध पिलाने में मदद की, इससे रानी के अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास जगा। अब रानी को दूध भी भरपूर आने लगा है, रानी दूसरी माओं को सलाह भी देने लगी है।
1: वाह, यही तो असली बदलाव है, जानकारी से आत्मबल। अच्छा भाभी, एक और बात, स्तनपान शिशु को कराने के लिए सही तरीका भी है क्या?
0: हाँ, चार सही तरीके हैं। माँ को आरामदायक मुद्रा में बैठाना चाहिए, बच्चा और माँ का पेट आपस में सटा हो, बच्चा पूरे स्तन को मुंह में ले, पिलाने के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलवाएं। और ध्यान रखें, शहद या गाय का दूध छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, शहद से बॉटुलिज्म नाम की बीमारी हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है, और गाय का दूध बच्चों के लिए भारी होता है, उससे एलर्जी या पेट की तकलीफ हो सकती है।
1: वाह भाभी, इतनी सटीक जानकारी और इतने सरल तरीके से आप ही दे सकती हैं। एक और बात भाभी, सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देती हैं?
0: बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अधिकृत संस्थानों में प्रसव बिल्कुल मुफ्त होता है। इसमें सिजेरियन डिलीवरी भी शामिल है यदि जरूरत हो तो। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रख सकें। INCF इंटेंसिव न्यूट्रिशन कैंपेन, यह अभियान भारत सरकार द्वारा मल्टी सेक्टोरल पोषण सुधारों को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है जो खास तौर पर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कुपोषण की रोकथाम और नियंत्रण, जनमानस में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 0 से 6 साल तक के बच्चों, किशोरी लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को उचित पोषण सुनिश्चित कराना, समुदाय के साथ मिलकर व्यवहार में बदलाव लाना। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, यह सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है ताकि माँ के दूध के महत्व को बताया जा सके और स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य है लोगों को स्तनपान के फायदों के बारे में जागरूक करना, स्तनपान को समाज में सम्मानजनक बनाना, माताओं को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन देना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, समुदाय और नीति निर्माताओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। आंगनबाड़ी और आशा बहनें भी घर घर जाकर सही सलाह देती हैं।
1: सरकार हमारी माँ बहनों के लिए कितना कुछ सोचती हैं, यह सुनकर मन को सुकून मिलता है।
0: ये बात तो सही है, लेकिन सेहत और सुरक्षा की ये सारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब हम खुद आगे बढ़कर इसका फायदा उठाएंगे। गर्भवती महिलाएं समय पर जांच कराएं, टीकाकरण कराएं, नवजात को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दें, अच्छा खानपान और पोषण अपनाएं, सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का पूरा लाभ लें, और जब आशा बहन या आंगनबाड़ी दीदी घर आए तो उनकी बात ध्यान से सुने।
1: बिल्कुल सही, स्तनपान माँ का पहला उपहार। याद रखिए, माँ का दूध हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। माँ का दूध हर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। सही जानकारी से ही बनेगा स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ समाज।
0: और हर माँ को ये जानना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी डॉक्टर है। माँ का दूध ही बच्चे की पहली दवा है, इसीलिए स्तनपान को अपनाइए, बच्चे की जिंदगी को सुरक्षित बनाइए।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस संदेश को जरूर आगे फैलाइए। माँ का दूध हर बच्चे का अधिकार है और इस स्तनपान सप्ताह आइए हम मिलकर हर माँ को सहयोग और हर बच्चे को स्नेह देने की कसम लें। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
13: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विजयपुर जम्मू प्रतिनियुक्ति आधार पर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है: जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सैनिटेशन ऑफिसर, सीनियर फार्मासिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अन्य विवरण, आवेदन पत्र, नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए एम्स जम्मू की वेबसाइट www.aimsjammu.edu.in।
14: नमस्कार,
13: नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब आमंत्रित कर रहा है प्रधानाचार्य के एक पद को भरने के लिए आवेदन। प्रतिमाह वेतन रहेगा 1,44,200 रुपए समेकित। योग्यता और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.niiftiindia.com। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रधान निजी सचिव के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। नियम शर्तों योग्यता आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। मास्टर गजेटेड पीजीटी पदों की संख्या 1 है। वांछनीय योग्यता है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अध्यापन का 3 वर्ष का पूर्व अनुभव। एक पद स्कूल काउंसलर असिस्टेंट मास्टर का है जिसके लिए उम्मीदवार को होना चाहिए मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का अनुभव अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में दक्षता सीनियर सेकेंडरी स्तर पर न्यूनतम सहभागिता खेलों में भागीदारी और कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान भी उम्मीदवार को होना चाहिए। आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान की वेबसाइट और ईमेल कर सकते हैं इस पते पर principal@gmail.com। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर Grade 1 और सहायक प्रोफेसर Grade 2। इन भर्तियों के लिए विभाग विशेषज्ञताएं और पदों की संख्या की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विभाग और विशेषज्ञताएं इस प्रकार हैं: सिविल इंजीनियरिंग संरचनात्मक इंजीनियरिंग भू तकनीकी इंजीनियरिंग और परिवहन इंजीनियरिंग। यांत्रिक इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरणन और नियंत्रण तथा मैकाट्रॉनिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। विद्युत इंजीनियरिंग में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI तथा संचार और संकेत प्रसंस्करण। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में VLSI परीक्षण वास्तुकला और चिप डिजाइन। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान डेटा विज्ञान और बिग डेटा प्रणालियां और वास्तुकला वित्तीय गणित तथा क्रिप्टोग्राफी। मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा शिक्षण विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक वित्त। प्रबंधन अध्ययन में मानव संसाधन प्रबंधन वित्त और संचालन तथा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं recruitment.nits.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
14: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
15: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
16: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
17: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
17: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
19: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
20: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
21: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
20: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
21: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
22: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
21: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
22: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
21: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
22: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
23: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
24: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
23: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
24: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
23: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
24: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
25: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
22: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
26: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों के सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,00,000 रूपये और घायलों को 1,00,000 रूपये देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरू और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग स्यू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या हुआ? अरे ये ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
16: क्यों, क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
16: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
16: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
17: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
15: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में मुहर्रम का त्योहार हुआ समाप्त। महिला की मौत के मामले में मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मुहर्रम पर डीएम, एसपी और शिक्षा मंत्री ने दी गोपालगंज वासियों को शुभकामनाएं। जिले के 4 अंचलाधिकारियों का हुआ तबादला और 24 घंटों में गिरफ्तार 11 लोगों को भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्योहार समाप्त हो गया। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस में भारी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए ताजिया जुलूस इत्यादि में दंडाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया गया था। जुलूस निर्धारित मार्गों से होकर ही आगे बढ़ा, जहां लोगों ने श्रद्धा और सम्मान के साथ ताजिया का स्वागत भी किया। शहर में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को अलग अलग इलाके में तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराया गया। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी पूरे दिन स्थिति का निरीक्षण किया। कई इलाकों में पेट्रोलिंग कर भी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन की ओर से सभी जुलूस का ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी किया गया। साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस बल को भी सक्रिय रूप से तैनात किया गया था। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनरवा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृत महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जाँच शुरू की है। मृत महिला बनरवा गांव निवासी सुभाष यादव की 35 वर्षीय पत्नी अंजू देवी बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार परिवार में खाना बनाने को लेकर अक्सर विवाद होता था। गुरुवार की रात भी इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। मायके पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान अंजू देवी के साथ मारपीट की गई और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि इसके बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटका दिया गया। इधर घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मायके वालों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आज मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गोपालगंज वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी लोगों से आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। प्रशासन ने अफवाहों से दूर रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का भी अनुरोध किया। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने भी गोपालगंज वासियों को मुहर्रम पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। पिछले 24 घंटों में अलग अलग मामलों में गिरफ्तार सभी 11 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसमें शराब के मामलों में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो वहीं हत्या के प्रयास और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिरीपुर थाना की पुलिस ने 270 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई और कार को भी जब्त किया गया। पकड़ा गया आरोपी आनंद कुमार है, जो नमो कुमार झा का पुत्र है और मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के बखई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। यह कार से शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने सिरीपुर थाना क्षेत्र के बंसी पत्राहा के पास गुप्त सूचना के आधार पर इसको दबोच लिया। सरकार के तरफ से जिले में कई प्रशासनिक पदाधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। हालांकि पूरे बिहार में ही प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोपालगंज में भी अंचलाधिकारियों का तबादला हुआ है। बताया जा रहा है कि उमा कुमारी को पंचदेवरी और मनोरंजन शुक्ला को कुचायकोट का नया अंचलाधिकारी बनाया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसको लेकर प्रशासनिक हलकों में बड़ी हलचल देखी जा रही है। नए पदस्थापित अधिकारियों को जल्द ही कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही उचका गांव और थामे के अंचलाधिकारियों का भी तबादला हुआ है। पेंशनर्स एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता रामेश्वर सिंह ने की। बैठक के संदर्भ में बताया गया कि 23-24 को पेंशनर एसोसिएशन बिहार पटना का राज्य सम्मेलन कर्पूरी सभागार समस्तीपुर में पूरे जोश खरोश के साथ संपन्न हुआ, जिसमें गोपालगंज जिले से कुल 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में गोपालगंज से राज्य पदाधिकारी के रूप में रामेश्वर सिंह को महामंत्री, रामायण सिंह को वित्त सचिव और शिव नारायण बारी, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव तथा लालदीप नारायण राय को राज्य उपाध्यक्ष और वीरेंद्र राय को संयुक्त मंत्री निर्वाचित किया गया है। इस प्रकार गोपालगंज जिले से राज्य पदाधिकारी के रूप में आधा दर्जन लोगों का गौरवपूर्ण निर्वाचन हुआ है। इधर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्राम सेल्हौरी प्रखंड दुलहिन बाजार जिला पटना में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जो अध्यक्ष हैं भूमि एवं जल प्रबंधन विभाग के, इनके साथ तमाम वैज्ञानिकों ने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताया तथा मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने की सलाह दी। इधर बरौली थाना की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर अपहरण कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी बुलेट मांझी है, जो हरखुआ के मुन्ना मांझी का पुत्र है। इस आरोपी पर अपहरण का मामला दर्ज है और यह फरार चल रहा था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मंडल कारा चनावे में कैदियों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी और मंडल कारा चनावे के विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदियों के बीच नालसा के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशीली दवाओं के अवैध तस्करी तथा नशा के दुष्परिणाम, ड्रग्स एवं अन्य नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, नशा उन्मूलन आदि विभिन्न विषयों पर कैदियों को जागरूक किया गया और उन्हें नशा के प्रति सचेत किया गया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में मुहर्रम का त्योहार हुआ समाप्त। महिला की मौत के मामले में मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मुहर्रम पर डीएम, एसपी और शिक्षा मंत्री ने दी गोपालगंज वासियों को शुभकामनाएं। जिले के 4 अंचलाधिकारियों का हुआ तबादला और 24 घंटों में गिरफ्तार 11 लोगों को भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
19: नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
19: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
19: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
10: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
10: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम हर हर महादेव।
20: ठक ठक।
21: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
25: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
26: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर

0: रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है, केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:18 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं हर रोज की तरह तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग को पुराने गाने का फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने का फरमाइश करें और अपने गाने के इंतज़ार में लगे रहे और हम आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने का फरमाइश के साथ कार्यक्रम में जुड़ना है, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। यहाँ पे पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय राम राम गुड इवनिंग सुनो भाई केम छो फिल्म दिल तो पागल है संग भोली से सूरत डेडिकेट टू रेडियो दोस्तों को ऑल रेडियो दोस्तों को एंड रेडियो फैन पंकज नाम से मोहब्बत करने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और काफ़ी दिन के बाद इस कार्यक्रम में दस्तक दिए हुए हैं। क्या हाल चाल है आपका रेडियो फैन पंकज जी? आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कुछ तो मैसेज शामिल कर ले फिर आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगाज करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि हाय नमस्ते आई एम बिट्टू शर्मा, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। पिपराही से जुड़े हुए हैं बने रहे हमारे साथ, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हाय मैं कमलेश कुमार विलेज शबिया फील्ड गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी आपकी भी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नाम अंकुश कुमार पता गोपालगंज गंगा गाना सांसों की माला जपते जपते, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और बढ़ते आगे अब पंकज जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे सॉन्ग भोली सूरत।

0: आए हाय
1: कमाल के शौक रेडियो रमछीम 90.4 FM पे सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम सेंड करना है, और जैसे आपकी मैसेज हमारे पास पहुंचेगी वैसे आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुंच रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि शुक्रिया सोनू भाई, और हाल खबर एकदम मस्त बा। आज मेला रहा ला जलेबी अकेले अकेले निपट दिए का, तो जलेबी तो हम देखे ही नहीं देखे थे, रास्ते में आते वक्त बड़ी धूमधड़ाका का भीड़ था और सब कोई मिला जा रहा था, और इसी वक्त हम ऑफिस आ रहे थे तो देखे कि मेला बड़ी ज़ोर शोर से लगा हुआ है। खैर हम ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि समय जो है थोड़े लेट हो रहे थे हम समय से, जिसके कारण आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। और इनके तरफ से लिखा गया है कि जुलूस मेला की वजह से लाइट दोपहर से ही गुल थी और गर्मी तो ओहो हाल बेहाल, और फिर याद आया कि रेडियो सुनते हैं और फिर ठंडक मिल रही है। जय हो। और हाल तो बेहाल है ही, इधर भी हमें लगता है कि दो या ढाई बजे से लाइन गोल है बिजली, और UPS भी जवाब दे चुका है, इधर भी जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि सब किसी का यही हाल हो गया है, सब कोई अपने अपने सुविधा अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अभी आधे एक घंटे करीब लग ही जाएंगे बिजली को आने में। तो फिलहाल हाल को समझते रहे और आगे गाने के साथ एंजॉय करना भी है, तो आगे मैसेज हम शामिल करते हैं। और अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि मेरा नाम मिस्टर युग है और नमस्कार सोनू जी, कैसे हैं? तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में मिस्टर योग जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नज़ारे मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इजहार हो जाता है, न जाने क्या कसी से चाहत में कि कोई अनजान भी हमारी ज़िंदगी का हकदार हो जाता है। सोनू भाई नमस्कार, पंकज भाई नमस्कार, अभी तक कोई मिला कि नहीं? मैसेज करते हैं दिलीप राम जी, और अब पंकज भाई बताएंगे कि कोई मिला कि नहीं, अगर सुन रहे होंगे तो ज़रूर बताएं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं यहाँ पे कमलेश जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है नदिया के पार मूवी से, गाने की फरमाइश कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो चलिए आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ, और हम सब भी आपके साथ हैं रेडियो रमछीम 90.4 FM पर।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MCM 90.4 FM पे। सोशल लाइस में फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सर जी, आपको धन्यवाद है कमलेश जी रेडियो MCM सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी? मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी दरगाह, डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मेरी एक वीक कंप्लीट हो गई है, तो मुझे भी सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, हम भी जुड़ गए हैं, हाजिरी दर्ज कर ले। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सोल नेपाल बिटर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मुकेश मंकेश साहनी, भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, फिल्म दलाल का गाना चोरी चोरी मैंने भी तो अखिया मिलाई रे। सुनो सर, नमस्कार, कैसे हैं? तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और सुनोज जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सुनोज जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और रही बात आपकी फुल मैसेज शामिल करने की, तो आपकी मैसेज हम शामिल करेंगे थोड़ा सा समझने के बाद और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने के फरमाइश करते हैं अंकुश जी गोपालगंज से, गाने का बोल देते हैं सांसों की माला जपते जपते। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज लिखा गया है कि सर जी मेरा गाना सुना दीजिए जल्दी थोड़ी, नहीं तो मैं सुन नहीं पाऊँगी। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है बलमा मूवी से बांसुरिया अब यही पुकारे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे प्रीति रैदास जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि खान सर सिंह, तो आप कहना क्या चाहते हैं आप बताएं। और यहाँ पे अभी तक पंकज भाई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं पहुँचा हुआ है दिलीप जी, और हमें लगता है कि वो अपने गाने सुनने के बाद से गुल हो गए बिजली की तरह, बिजली जो दोपहर से गुल थी और अभी तक आई नहीं है, और उसी तरह ये भी लगता है कि गुल हो गए। तो चलिए आगे गाने का साथ एंजॉय करना है और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रामछिम 94.4 FM पे बालमा मूवी से

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक पर पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमछीएम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर प्रणाम, मुझे गाना सुना दीजिए, गंगा किनारे मेरा गांव का। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ में विनाथ माझी जी। और आगे मिसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शुक्रिया सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमछीएम सुनने के लिए। और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और लिखे हुए हैं कि तेरे प्यार का क्या हिसाब दूँ, तेरी मोहब्बत को क्या खिताब दूँ, कोई अच्छा सा फूल होता तो तुम्हें ज़रूर पेश करते, मगर जो खुद ही गुलाब हो उसे क्या गुलाब दूँ। दिल की धड़कन से गाने के फरमाइश किए हुए हैं, तो आपका गाना हम प्ले करेंगे और गाने का बोल देते हैं, तुम दिल की धड़कन में रहती हो। काफ़ी प्यारा सॉन्ग है और आगे मैसेज कुछ तो मैसेज शामिल कर लेते हैं, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हमको सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे यदि आपकी फरमाइश पहुंचती है तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गुड नाइट, और बिल्कुल आपको आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करती है निशा, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हम केशव झा गीत गाता चला सॉन्ग प्लीज़ सर जल्दी, में नहीं तो मैं नहीं सुन पाऊँगा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है और जल्दी जल्दी सब कोई बोलेंगे तो हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, एक के बाद एक ही तो गाने सुना सकते हैं। अब रहा कोई बात, कोई व्यक्ति कह दे कि जल्दी में, तो सब कोई जल्दी ना कहे, एक के बाद एक ही गाने हम प्ले कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

टेडर एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और कमल के गाने सुन रहे थे, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे लिखा गया है कि नई सॉन्ग कौन है, दिशा में सांसों की माला बलमा और तुम दिल की धड़कन में, सुपर ऑल सॉन्ग सुनो भाई, आजकल अंजलि और देव मिलके राम को पहाड़ से धक्का दे रहे हैं, शुक्रिया। और कहते हैं कि इससे पहले कि ना ना ना हम जुड़ते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं, खाना खा रहे थे। ओ चलिए कोई बात नहीं, चोरी चोरी बिन बताए तो खा ही लिए, बेईमानी कर ही लिए। और यहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे, एक शब्द भी नहीं बोल पाए कि हाँ हम खाने जा रहे हैं, कोई खाना चाहता है तो खा सकते हैं, क्या घट जाता क्या। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और मैसेज करते हैं मेघनाथ सर, सर हम एक महीना बाद मैसेज किए हैं, गाना सुना दीजिए, बिल्कुल कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि मोहब्बत को लोग खुदा मानते हैं तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं, मोहब्बत को लोग खुदा मानते हैं तो प्यार करने वाले को क्यों बुरा मानते हैं, जब जमाना ही पत्थर दिल है फिर पत्थर से लोग क्यों दुआ मांगते हैं, सुकून के लिए। और इस मैसेज को करते हैं राम पुकार जी, और इन्हीं के गाने के फरमाइश अभी चल रही थी और हम सभी सुन रहे थे, और कहते हैं कि आप मेरे गाना बजाए इसके लिए दिल से थैंक्स सुनो भैया, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और लिखा गया है कि सर मेरी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकते तो मेरी लाइन को पूरा करें, बड़ेरिया थाना क्षेत्र बालापुर से, तो आपकी लाइन जो है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, आप कुछ भी मैसेज कर देते हैं और वो हम रेडियो पे शामिल नहीं कर सकते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं यहाँ पे, और अनीश जी आपकी फरमाइश इस सप्ताह हमने पूरी किए हुए हैं, सो आज तो नहीं पूरा करेंगे, जो भी श्रोतागण इस सप्ताह में छूटे हुए हैं उनकी फरमाइश पूरी करनी है। और आगे बढ़ते हैं अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे, पहुँचा हुआ है, और गाने का बोल दिया गया है गीत गाता चला जाऊँगा, और इस मिसेस को करते हैं केशव झा जी सासामोसा गोपालगंज से, तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे।

टुडे एमजीएम 94 एफएम पे और काफ़ी प्यारे सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड सुन रहे थे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे बढ़ते हैं अगले गाने के फरमाइश हम मेघनाथ जी की पूरा करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और गाने का बोल देते हैं गंगा किनारे मेरा गांव हो। तो आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। आगे कई मैसेज पहुंच रहे हैं और लिखा गया कि थैंक यू भैया जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो बिल्कुल आपकी मैसेज तो हमारे पास पहुंची है, लेकिन क्या ही करें, समय की समाप्ति हो रही है तो आज तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब अगले सप्ताह पूरा करने की कोशिश रहेगा। और अंतिम गाने प्ले करते हम मेघनाथ जी की और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि समय जो है काफ़ी आगे निकल चुके हैं और गाने के बाद हो सकता है कि अब मैसेज और गाने प्ले करने और मैसेज शामिल करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो अंतिम गाने इन्हीं का रहेगा। आप सब सुनते रहे रेडियो रमझम 94 एफएम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ए गुड़िया, चला ना।
3: कहावा
2: मठ पर
3: का करे,
2: सुगिया बाबा से हाथ दिखावे, भाग बचावे। ओ देखो बाबा तो नहीं आवतारे। प्रणाम बाबा।
4: खुश रहो बच्ची।
3: बाबा प्रणाम। ए बाबा, तनिक हमार देखी ना।
4: अरे इधर सटोगी तब न देखेंगे, आँखों कमजोर है, हाथ तो बड़ा मुलायम है रे, रेखा भी कम है, सदा सुखी रहोगी। एगो लड़का और एगो लड़की का जोग है, लेकिन एक बात कहें, अभी ब्याह का संजोग नहीं है।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार, भारती जी बोल रहे हैं।
1: नमस्कार। हाँ,
2: कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
2: हम भी ठीक है, जकास बिंदास, एकदम ठीक, एकदम अच्छे से। बढ़िया है।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
2: अभी तो नींद आ गया था सुबह से, पंखे के नीचे, फिर 11 बजे से नींद टूटा है थोड़ा बहुत। फिर पंचायत से स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं ना?
1: जी जी
2: जी, वहीं थे तो फिर आए, तो थोड़ा लेट से खाना खाए थे 9 बजे, और अभी काम खाली है। और खाने के बाद थोड़ा नींद आने लगा।
1: कोई नहीं, खाने के बाद थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए,
2: शरीर को तो ध्यान चाहिए, नॉर्मल है कि नहीं? अभी तो बनता है।
1: कौन सा गाना सुनेंगे आज?
2: आज गाना था पैर में बूट हो गया, कपड़े हो गए, नौकरी हो गया, छुकड़ी होगी, क्या बात हो गया, तो जमाना सीख करेगी, सलाम करेगी, ऐसा गाना।
1: ओके
2: जी, और सब सुनाइए।
1: और सब तो बस चल रहा है, ठीक है। तो गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मैं सुधीर खोल बोल रहा हूँ, करी हूँ झारखंड से।
1: कैसे हैं आप?
0: आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
1: मैं भी ठीक हूँ
0: जी।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: सुना दीजिए मैम, कोई भी सुना दीजिए। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का डुएट सॉन्ग सुना दीजिएगा भोजपुरी में।
1: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रेंजिम की पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रेंजिम के प्यारा प्यारे श्रोता गाने सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
7: नमस्ते मैडम जी।
6: नमस्ते,
7: नेहा बोल रहे हैं भोदर से।
6: कैसी हैं आप?
7: अच्छा, यहाँ बताइए कैसे हैं?
6: हम भी बढ़िया हैं।
7: अच्छा ठीक है, बढ़िया है तभी तो अच्छा रहेगा। तब नाश्ता हो गया?
6: मेरा हो गया है, आपका हो गया क्या?
7: आपका इंतजार कर रहा
6: हूं। अच्छा चलिए, कोई नहीं, इंतजार खत्म हुआ, कॉल लग गया। और बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
7: गाना सुना दीजिए, भाई भाई नक्सल भी हो।
6: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
7: आपको जितना रेडियो जिम दोस्त है, सुनते हैं सबके साथ।
6: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है बहन जी, आपके लिए फरमाइश सुन रहे हैं।
0: तो बताइए, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन गाना है भोजपुरी में।
0: जी जी, बता दीजिए।
1: पवन सिंह की आवाज में गाना है।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: ये चुम्मा ले जा गाल में संग दिलवा ले जा निकाल के।
0: अच्छा जी, हाँ है,
1: पवन सिंह का है भोजपुरी में। जी, और ये गाना डेडिकेट है अपने गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल ठाकड़ है, गोपाल ओझा है, तकवासा से, और आपको भी।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।

0: प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
1: चलिए बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: आज तो गाना सुनना है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मोहम्मद अजीज के एक गाना है, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, करबल में लुट गया है घराना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। यही वाला गाना सुनवा दीजिएगा मैडम जी। और सबसे पहले आपको सुनवाएंगे और जितने रेडियो रेंजिन सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिन 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है, खाना खा ली।
1: खाना हो गया है आपका?
0: मेरा भी हो गया है।
1: तो और सब बताइए, और क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, धूप में बैठा है। लोग
1: धूप में?
0: नहीं, यहाँ में मतलब धूप बहुत ज्यादा है इसलिए।
1: अच्छा, हमको लगा धूप में बैठी है आप, वो भी गर्मी में।
0: नहीं।
1: अच्छा बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: दिल में प्यार तेरा उठो पूरी तवा, यही गाना सुना दीजिएगा।
1: ओके, और कौन किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
0: आपको, रेडियो रेंज सुनने वाली सभी लिसनर को।
1: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: प्रणाम मैम।
6: प्रणाम,
5: क्या हाल बा?
6: ठीक बाप नहीं बताई।
5: हमरो ठीक है बा, आपन बताई हमने सके क्या पूछ ले बनी। हमने ठीक बनी सर, रउरा लो बस ठीक रही लोगी ने ये बा भगवान से दुआ, कैसे रउरे लोग के जरिए इतना आदमी के मनोरंजन होता है। आज के मौसम कैसन बा गोपालगंज के?
6: मौसम तो हल्का गर्मी बा, गर्मी तो बढ़ रही बा, क्या कहे, धूप निकल बा, गर्मी बा। वे
5: भारती जी ना, हमने तो एक बार 42 आदमी के पहचान जान छो, आज मन कैल की भोजपुरी में बात करल जाए।
6: कोनो बात नहीं है,
5: भोजपुरी में निमन लगे ला, अब आदमी बाहर रह जाला तो तनी भोजपुरी बोले में दिक्कत हो जाला।
6: कोनो बात ना, हमने के बानी सन भोजपुरी बोले
5: है तो। तो मान के चले की हिंदी गाना तो सब जगह सुने के मिल जाला, लेकिन गोपालगंज के सुनल जाये तो काहे हिंदी सुनल जाये, भोजपुरी सुनल जाये, भोजपुरी में ही बनिया गीत होला, ऐसा बात थोड़े भाई सब खराब होला।
6: ना ना, भोजपुरी में भी अच्छा अच्छा गीत होला।
5: तो एगो आज हमारा गाना सुना दी,
6: बता दी।
5: बबीता सागर के ही रही आज की, ना जी अब तुम्हारा दुनिया आज बुझाई बा।
6: अच्छा,
5: धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली
6: गाना, पता नहीं सुनत रही रेडियो रेंज 90.4।
5: सुना दो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
0: माँ फरे जानकारी बोल रहे हैं जी, हम गाना सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और कहाँ से हैं आप?
0: हम बिहार से, बेतिया जिला से।
1: ओके, बता दीजिए गाना सुनना है आपको।
0: हिंदी गाना सुना दीजिए कोई सा अच्छा, आपको जो अच्छा लगेगा
1: आप अपना पसंद बताना होगा। आप अपनी पसंद बता रहे थे तो अच्छा होता, क्योंकि कॉल आपने किया है तो पसंद तो आपकी भी होनी चाहिए ना।
0: दाग दीपार का गाना चाहिए हम।
1: उसमें का कौन सा सॉन्ग, मतलब दाग दीपार का कौन सा सॉन्ग?
0: इसमें से कोई भी गाना होगा अच्छा सुना दीजिए गाँव को। जी जी।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
0: जी, मेरा रियाज भाई है। आज हम लोग ड्यूटी पे जाने वाले थे, हम नहीं गए, छुट्टी में, हम गाना सुनना चाहते हैं। जी,
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4। वालेकुम अस्सलाम,
6: क्या हाल है?
5: मेरा बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं?
6: हम भी अच्छे हैं।
5: नाम बता दीजिए।
6: मैं मोहम्मद अली, वार्ड नंबर 1 से।
5: तो बताइए और सब क्या हो रहा है अभी?
6: ड्यूटी हो रहा है मैम, इतना गर्मी लग रहा है, पंखा चलाने के बाद क्या बताएं।
5: गर्मी तो है,
6: बहुत गर्मी पड़ रही है
5: जी।
6: लगता है गाँव छोड़ के भागना पड़ेगा मेरे को पुणे, गर्मी की वजह से। पुणे में अच्छा रहता है मौसम, में हमेशा गर्मी बिल्कुल नहीं लगती,
5: वहाँ पे तो मौसम थोड़ा अच्छा रहता है।
6: पुणे में एकदम जिंदा आदमी रहता है, शरीर से पसीना नहीं निकलता है। आप नाश्ता पानी करके आए हैं? आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए, डर मूवी से।
5: डर मूवी,
6: हाँ, डर मूवी से गाना सुनाइए। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देख के तैयार करूँ।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
6: सबसे पहले तो आपको और अंतरी को और कमरान भाई को, राघव जी को और दिलीप भाई को और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी। चलिए ठीक है, ये सब गाना सुनाइए है मेरे को।
5: ओके ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: शैलेश कुमार, बाराबंकी से।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
0: हम भी ठीक।
1: मौसम
0: तो अभी इधर गर्मी है।
1: मौसम गर्मी तो इधर भी है। आज गाना सुनवा दीजिएगा मुझे कि कल तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, याद तेरी आएगी तो मैं क्या करूँगा।
0: चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: अपनी वाइफ को, आपको, पूरे परिवार को, तमाम रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम प्रिया है
5: जी। आप प्रिया जी कहाँ से हैं?
6: दिल्ली से।
5: अच्छा जी,
6: बता दिल्ली से। तो मुझे गाना सुनना है।
7: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
6: देख के बताए थी कैसा लगा थी, राजा राज से लगू लिया है।
7: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: हाँ,
7: बता दीजिए।
6: मेरी मम्मी, चाचा, मामा, पापा और आपको।
7: ओके ओके, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: कौन बोल रहे हैं? भारती जी, सोनी जी?
0: भारती,
1: मैं धर्मेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: बीच बजा दिया तुमने, खिड़की खोल दूंगी, एक गाना सुनवा दूंगी।
0: सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ, अपना रंजीत तिवारी है, वरुण पांडे है, शुभम तिवारी है।
0: ओके, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार,
2: आप कैसी हैं मैम?
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आगे लोग कैसे हैं?
3: सब कुछ ठीक है।
2: और मौसम उधर कैसा हो रहा है?
3: इधर का तो मौसम अभी गर्मी पड़ रहा है, धूप निकला हुआ है थोड़ा। तो आज मौसम मतलब हवा चल रहा है तो उतना धूप समझ में नहीं आ रहा है।
2: हवा थोड़ा चल रहा है।
3: हम्म,
2: तो गाना सुना दीजिए। आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है।
3: हम्म,
2: गाना सुना दीजिए। सनम का हर लबो पे सनम तेरा नाम आए।
3: एक बार और बोल दीजिए।
2: हर लबो पे सनम तेरा नाम आए, सनम फिल्म का गाना है।
3: ओके, सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: अब रेडियो रिमझिम जितने सुन रहे हैं सभी श्रोताओं से, और मैंने एक अनुरोध है
3: जी, बताएं
2: सभी श्रोताओं से कि श्रोता जितने भी सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम, वो अपने छत पर थोड़ा पानी रखे, उसके चिड़िया को पक्षी उक्षी को थोड़ा खिलाए पिलाए। गर्मी बहुत है, झाड़ा में या कोई बर्तन में भी पानी रखते, ताकि चिड़िया पक्षी को पानी पीने में सहूलियत हो।
3: जी मैम, और सब ठीक है?
2: जी जी जी मैम, सब बढ़िया है। आपका नाम सर? मैम
3: मेरा नाम भारती है, आपका नाम क्या है?
2: जी मैं पप्पू कुमार बोल रहा हूँ, पड़ारौना से, बढ़रिया। पड़ारौना बढ़रिया से। जी मैम,
3: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
2: थैंक यू मैम।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: भारती जी बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, नमस्ते जी। घंटा से नकुल लगा रहे हैं।
1: अच्छा जी,
0: अभी नहीं रहा था, खाली दिया था, खाली दिया।
1: आज कॉल आए आ रहे हैं बहुत ज्यादा इसीलिए।
0: तो कैसे हैं आप?
1: हम भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: अरे हम लोग क्या बताएं, धूप में बहुत हालत बिगड़ जाता है।
1: धूप तो है ही,
0: इतना धूप है कि लाजवाब है, बिल्कुल धूप लाजवाब होता है आजकल।
1: धूप तो बहुत तेज निकल रहा है, ये धूप से बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो रहा है।
0: कल तो सोनू जी से बात हुआ था, ये गाना भी सुनाई थी सोनू जी।
1: आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज तो हमारा फरमाइश है, नाम ही भूल जाते हैं, सोचते हैं कि बताएंगे बोर्ड पर जाते।
1: कोई नहीं, आराम से याद करके बताइए।
0: फिल्म का नाम क्या बोलते हैं? दाता। दाता फिल्म का जो नहीं होता है गाना, वो विदाई वाला गाना है।
1: हाँ हाँ,
0: उसी का
1: वही सॉन्ग सुनना है ना?
0: हाँ हाँ, वही सॉन्ग सुनना
1: है। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: पहले तो आपको, सोनी जी को और खागे रामा जी भाई जी को। ठीक है, तो वही सुना दीजिएगा।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: हाँ,
1: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाया डाला अपना मेडिकल हॉल पे।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत है। सोनी मैडम बोल रहे हैं?
0: नहीं।
1: अच्छा आप बोल रहे हो। हाँ तो सुनिए ना, हमको गाना सुनाइए। नदिया के पार फिल्म से कौन दिशा में लेकर चला रे बटैया।
0: सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: हाँ चाहेंगे। अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और गुमनिया के फौजी भाई रिटायर हैं, 1962 का लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको भी सुनवाना, कन्हैया प्रसाद को सुनवाना चाहता हूँ।
0: तो और सब बढ़िया है ना?
1: हाँ अपना सुनाइए ना।
0: हमारा भी ठीक है।
1: हाँ हमारा ठीक है। मौसम बहुत गर्म है, बहुत मौसम खराब हो रहा है।
0: हाँ।
1: अब देखिए बरसात कब से शुरू होता है, मानसून अभी नहीं आया। बहुत मेहनत करने पर लगता है आपके यहाँ फोन।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत व्यस्त बिजी बता रहा था।
0: आज कॉल आए हैं बहुत सारे।
1: हाँ ठीक है, सुनवा दीजिएगा।
0: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं, आईआरएमपी से।
1: नमस्कार
0: जी मैम, बस बैठे थे मैम, फोन लगा रहे थे, फोन बहुत मुश्किल से लगा मैम, एक घंटा हो गया फोन लगाते हुए।
1: अच्छा,
0: बहुत नंबर बिजी जा रहा है। जी जी जी मैम,
1: कॉल आ रहे हैं ना, इसलिए नंबर बिजी जा रहा है, लगातार कॉल आ रहा है।
0: तो मैम चाय नाश्ता हो गया मैम?
1: हाँ हाँ, हमारा हो गया, आपका हो गया?
0: जी अभी तो नाश्ता हुआ मैम, हम सोचे अभी तो 12 बजी है, थोड़ा फोन आउट ट्राई करते, फिर 12:30 बजे खाना खाने चले जाएंगे मैम। तो अभी बैठे थे, सिर्फ फोन कौन भी लगा रहे थे, फोन लग गया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा चलिए, तो बढ़िया है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जान, और गाने के बोल है बेईमान किया रे बड़ा जुर्म किया रे, यही गाना सुनना चाहते हैं, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:13 तथा सूर्यास्त 6:47 के आसपास होगा। तो आइए दिन की शुरुआत एक प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वही सफलता का वास्तविक अधिकारी बनता है। तो श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने प्रकृति को जगाना शुरू कर दिया है और हमारी स्टूडियो घड़ी सुबह के 5 का संदेश दे रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक भक्तिमय गीत के साथ।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।